0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुक्त अशी विमुक्त अशी मी चैतन्याने विहार करते, मुक्त अशी विमुक्त अशी मी चैतन्याने विहार करते, कोण कशाला उदार व्हावे मीच मनाने मल्हार होते।
1: अवश्य ऐका नभोनाट्य ती विमुक्ता। लेखिका आणि प्रमुख भूमिका वर्षा दांदळे, सहभाग ज्ञानेश्वर नाईक। सोमवार दिनांक 15 जूनला दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळ कार्यक्रमात अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR मोबाईल ॲपवर नभोनाट्य ती।
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
7: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
6: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
8: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
6: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा

0: जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
6: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
4: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सोमवार की सुबह मेरी और आपकी मुलाकात 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर अपने मोबाइल के जरिए देश और दुनिया में कहीं भी। इस वक्त बज चुके हैं पूरे 8:47 और हेलो मुंबई के साथ मैं ममता सहगल हूं आपकी सेवा में हाजिर, क्योंकि आज आपके लिए लाई हूं देश और दुनिया के इतिहास में क्या हुआ था ऐसी कुछ खास रोचक जानकारियां। साथ ही साथ 10 से 11 के बीच हमारे बीच होंगे खास मेहमान, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में अब आने वाले कुछ दिनों में आप यहां हमारे इसी चैनल पर योग से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनने वाले हैं, बहुत सारी जानकारियां जानने वाले हैं। और इसी सिलसिले की शुरुआत कर रही हूं आज मैं हमारी उस मेहमान के साथ, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि फिलहाल हम चाहते हैं कि इस जहान को हम इतना खूबसूरत बना दें कि हर कोई यही बोले कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है।

शब्बीर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना यही 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर, जो हमारी प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप है और यहां पर आप हमें दुनिया में कहीं से भी सुन सकते हैं। फिलहाल आपको बताऊं कि आज का दिन क्यों है खास। देश और दुनिया की ऐसी खबरें जो आज के दिन बन गई एक इतिहास। फॉर एग्जाम्पल 1954 में यूरोप के फुटबॉल संगठन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो है गठन हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। और 1908 में आज ही के दिन कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। वैसे हर शुरुआत बेहद खूबसूरत होती है, चाहे वो जिंदगी में कोई भी हो। और कभी भी अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा हो तो आप ये मत सोचिए कि इस चीज़ का अंत है, ये आप सोचिए कि ये किसी एक नई चीज़ की शुरुआत है। बिकॉज जब कोई चीज़ अंत होती है तो वो किसी एक नई चीज़ को जन्म जरूर देती है। इसी खूबसूरत से थॉट के साथ, इसी खूबसूरत से विचार के साथ, इसी खूबसूरत सी बात के साथ बढ़ते हैं आगे। आपको सुनवाते हैं कुणाल खांजावाला और सुनील चौहान की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। गीत के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

भैया आप सबके इतने प्यार के लिए शुक्रिया, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। श्रीधर मुराजकर जी, पंकज मोहर जी, माधव वाघ जी, किशोर नायक जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, विजेंद्र घटोल जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, महेश बोहरा, प्रणव शिंदे जी, और आर्यन सोमवंशी जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आपको गीत पसंद आ रहे हैं हमारी, थैंक यू सो मच अपने मैसेजेस से हमारा दिन और खूबसूरत करने के लिए। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। और आज मैं आपको बता रही हूं देश और दुनिया में आज के दिन क्या हुआ था और क्यों बन गया आज का दिन खास, क्यों बन गया आज का दिन इतिहास। भाई आज ही के दिन 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S-213 लॉन्च किया था। यही नहीं, आज ही के दिन 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वायुमंडल में उत्सर्जन को कम पर अम्ल वर्षा रोकने हेतु 26 यूरोपीय देशों और कनाडा के बीच हुए समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इजराइल और वेटिकन सिटी में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अब ये क्या था जो वायुमंडल में हुआ था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। अब क्या करें, बे इरादा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं।

भैया आज के दिन बहुत कुछ खास है, आज बहुत सारे महान व्यक्तियों का जन्म भी हुआ है, आज के दिन बहुत सारे खास दिन भी मनाए जाते हैं, सबके बारे में आपको मैं यही जानकारी देने वाली हूँ। उसके लिए आपको हमारे साथ साथ बनना रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है मैं आपको ये बता दूं कि 10:02 से नमस्ते भारत में आज हमारे साथ होंगी खास मेहमान, जिनसे हम बात करेंगे योग के बारे में और जानेंगे कि कैसे योग ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ साथ जुड़े रहना पड़ेगा।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

मां। क्या बात है, रेमो फर्नांडिस की आवाज है और साथ है हमारा आपके साथ साथ हर पल हर वक्त हर लम्हा 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर देश और दुनिया में कहीं से भी। आपको ये बता दूं आज का दिन क्यों है खास, क्यों बन गया आज का दिन इतिहास। तो इसके बारे में आगे अगर मैं बढ़ूं तो आपको बताना चाहूंगी कि 2004 में जो है ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति मिली और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ बेस्ट सेलर बनी थी साल 2004 में आज ही के दिन। साल 2005 में आज ही के दिन जमैका में आसल्फा पावेल का एथेंस में 8.77 सेकेंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बना था। साथ ही साथ और क्या हुआ था खास जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि फिलहाल एक गीत गीत के उस पार बातें बेशुमार।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ना ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ आपके साथ पूरे 11 बजे तक मेरा और आपका रहेगा साथ। वैसे आपको बता दूं कि आज दो ऐसी बॉलीवुड की धमाकेदार मूवीज थी जिनको रिलीज हुए 25 साल हो चुके हैं और जिन्होंने हमारे ऊपर लगान तो नहीं लगाई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गदर जरूर मचा दिया। जी हाँ बिल्कुल सही, आज ही के दिन साल 2001 में दो मूवीज एक साथ रिलीज हुई थी। वैसे दो मूवीज एक साथ रिलीज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ये बात बहुत बड़ी तब बन जाती है जब दोनों ही मूवीज ब्लॉकबस्टर हो जाएं, दोनों ही मूवी एक साथ सुपर डुपर हिट हो जाएं, एक तरफ लगान और दूसरी तरफ गदर एक प्रेम कथा। और इतनी खूबसूरत मूवीज ये थी, दोनों ही देशभक्ति से प्रेरित थी, दोनों में ही देशभक्ति की बातें थी, दोनों में देशभक्ति का रंग था लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कितनी अलग थी। हर एक तरफ क्रिकेट का जुनून था, एक तरफ हैंडपंप वाला सीन था, एक तरफ जो था म्यूजिक बहुत ज्यादा था, एक तरफ मूवी में सिर्फ एक ही गाना था।

0: लेकिन वो मतलब गाने और भी थे, लेकिन वो एक गाना ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो हर लिहाज में, एक्टिंग में कह लीजिए, डायरेक्शन में कह लीजिए, राइटिंग में कह लीजिए, हर चीज़ में जो है ये मूवी अपने आप में धमाल थी, कमाल थी और बेमिसाल थी। तो इन दोनों मूवीज़ को रिलीज़ हुए आज 25 साल हो चुके हैं और दोनों ही मूवीज़ ने अपना अपना एक नया इतिहास बना दिया था। तो मैंने आपसे कहा ना, कुछ होती हैं ऐसी फिल्में या फिर ऐसी कहानियाँ जो हमारे दिल में बस जाती हैं, ये उन्हीं कहानियों और फिल्मों में से एक थी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज ठीक 10:02 से हमारे साथ होंगी ख़ास मेहमान, तो भूलिएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों है योग ख़ास, तो आपको रहना होगा हमारे साथ। फिलहाल क्योंकि बात हुई है गदर मूवी की, तो गदर मूवी का एक गीत सुनते हैं और उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हम सुनेंगे लगान मूवी का गीत।
1: मैं निकला

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वही वक्त तेजी से भागता जा रहा है, तो इससे पहले कि वक्त भाग जाए मैं आपको ये बता दूं कि आज ही के दिन हर साल मनाया जाता है विश्व वायु दिवस, जिसे वर्ल्ड विंड डे कहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिन जो है मनाया जाता है। साथ ही साथ आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और आज इसी दिन के उपलक्ष्य में हमारे जो अगले आरजे हैं, आरजे निखिल, वो बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रेम नरसिंह से। तो फिर वो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये होगा दोपहर को 12 बजे से। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए हमने लाइनअप करके रखी हैं जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे होता है, ये हर साल 15 जून को बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है, और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ऑफिशियली मान्यता दी गई है, और दुनिया में इसे रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो भाई आज इस दिन की आप भी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आज है अभिनेत्री और गायिका सुरैया जी का जन्मदिन। साल 1929 में उनका जन्म हुआ था, और हम सब जानते हैं कि वो एक महान अभिनेत्री होने के साथ साथ एक प्लेबैक सिंगर भी थी, जिन्होंने फिल्मों में काम किया और अपना नाम रोशन किया, भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया। एक बेहतरीन अदाकारा, एक बेहतरीन गायिका। 1936 से 1964 तक फैले अपने करियर में उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। बहुत सारे इनके गाने हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन मैं आपको इनका एक बहुत खूबसूरत सा गाना सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि इनका जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से इनके लिए श्रद्धांजलि प्रेम भरी।

तो फिलहाल हम भी आपसे कोई दिल्लगी नहीं कर रहे हैं और आपको ठीक बता दें कि 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से और समाचारों के उस पार नमस्ते भारत में आपकी मुलाकात होगी दीप्ति जैन से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक योगा ट्रेनर भी है। किस तरह योगा से ये जुड़ी, किस तरह योगा ने इनकी लाइफ बदल दी, क्या हुआ इनके साथ, ये सारी बातें आप यहीं जान सकेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ साथ रहना होगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी ताकत है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी हेल्थ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ साथ रहना है। फिलहाल आपको बता दें ठीक 10 बजे समाचारों के उस पार मेरी और आपकी एक बार फिर से होगी मुलाकात।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर का दौरा कल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से विस्तृत बातचीत की और भारत फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह दौरा दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक अहम कदम साबित हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया जिससे वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। समाचारों में आगे है, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन

से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाह से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंगम में एजबेस्टेन में खेले गए ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया है। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर देश और दुनिया में कहीं से भी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इन्फ्लुएंसर और योग ट्रेनर दीप्ति जैन। दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
1: थैंक यू ममता।
0: बहुत लंबे टाइम से आपने योग को अपने जिंदगी में खास जगह दी है और उसका एक खास कारण भी था, लेकिन फिलहाल ये क्योंकि अभी अभी आई हैं और थोड़ा सा ये घबराई हैं, तो हमने सोचा इनको थोड़ा सा जरा रिलैक्स करवा देते हैं, नॉर्मल करवा देते हैं। और उसके बाद में दीप्ति, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह योग की तरफ आपका जो था ध्यान वो गया, कैसे आपने योग को अपनी जिंदगी में जगह दी और क्या बदलाव उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में देखे। तो बहुत सारे सवाल, आप तैयार हैं उन सबके लिए?
1: यस यस, पक्का।
0: ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, पहले गीत सुन लेते हैं, गीत के उस पार हम करेंगे बातें बेशुमार।

0: दीप्ति जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के उस पार दीप्ति से होगी हमारी खास बातचीत, जहां वो आपको बताएंगी कि कैसे योग ने उनका पूरा जीवन बदल दिया।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दीप्ति जैन, जो कि एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक योग ट्रेनर भी हैं। दीप्ति जी, एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू
0: ममता। दीप्ति, आपने मुझे बताया था कि कुछ खास कारण थे जिनकी वजह से आपने योग को अपने जीवन में जगह दी, तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में जो आप योग से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई?
3: एक्चुअली जब पेंडेमिक आया था 2020 में, तब मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज चालू हो गए थे। एक्चुअली आई हैव ऑटो इम्यून थायरॉइड, हाइपोथायरॉइड, तो उसमें ऑलरेडी डाइजेशन के थोड़े इश्यूज तो रहते ही है, वेट गेन के रहते ही है इश्यूज। तो मैंने अभी जब ये आया तो हम सब कुछ बंद हो गया था, एक्टिविटीज़ मेरी जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ बाहर की बंद हो गई थी। मैं एक रनर हूँ, तो मैं रनिंग मेरी बंद हो गई थी क्योंकि रोड पर जाना अलाउड नहीं था तभी। तो मुझे काफ़ी गैस की हाइपर गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए थे, उसके कारण मुझे जो ब्रीदिंग का लाइक चेस्ट में मतलब ऐसे कंजेशन हो रहा था जैसे कोई चोकअप हो रहा है मुझे, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ब्रीदिंग में।
0: आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी?
3: सांस लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे एक ऑनलाइन, जब तभी तो ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस होते थे, तो एक गुरु जी थे जो दिल्ली के, उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनके साथ ऑनलाइन योगा क्लासेस चालू किए और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। ऐसे लगा कि यही चीज़ थी जो मुझे शायद चाहिए थी अपनी लाइफ में। जैसे बाहर की एक्टिविटीज़ बंद हो गई तो कुछ तो घर पे तो एक्टिव रहना था, बिकॉज हाइपोथायराइड में बाकी चीज़ें बहुत आ जाती है प्रॉब्लम्स बॉडी में, तो उसके लिए मुझे फिजिकल एक्टिविटी मुझे चाहिए ही थी तभी। तो जब मैंने योगा चालू किया तो स्टार्टिंग में तो प्राणायाम भी मेरे से सही से नहीं हो रहे थे, जैसे जब भी मैं कुछ भी होल्डिंग कर रही हूँ ब्रेथ का तो वो भी नहीं हो पा रहा था, तो मुझे रोना आ जाता था कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे से। तो सर जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे बहुत पेशेंटली अच्छे से टेक्निकली सिखाया योगा, और मैं धीरे धीरे काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच गई, मतलब काफ़ी आसनास भी अच्छे करने लग गए, मेरी प्रैक्टिस भी प्राणायाम की इम्प्रूव हो गई, और उसके कारण मुझे बहुत मतलब उस चीज़ में मैंने रुचि ले ली और मैंने खुद को भी एडुकेट कर लिया और उसमें और ढलते गए बस।
0: तो
3: प्रैक्टिस
0: दीप्ति, जब आपने कहा कि आपने शुरुआत की तो आप प्राणायाम भी नहीं कर पाती थी, तो प्राणायाम में जहाँ तक मुझे पता है एक साइड से सांस लेते हैं, एक साइड से छोड़ते हैं, इस तरह से हम लोग डीप ब्रीदिंग करके सांस लेते हैं।
3: तो प्राणायाम में एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हो ये अनुलोम विलोम है, तो इसमें तो फिर भी कोई भी कर लेगा क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है जिसमें हमें सांस को रोकना नहीं पड़ रहा है। पर जैसे कि अभ्यंतर प्राणायाम है जिसमें हमें सांस रोकना पड़ता है अंदर, जो लॉकडाउन में काफी लोग अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रैक्टिस करते थे, तो वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो मैं वो मतलब मुझे, और एक बाह्य प्राणायाम है जो बाहर सांस रोकते हैं लंबा, वो भी मेरे से नहीं हो पाता था। तब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती थी और फिर मेरे जो मैंने जो ये प्रैक्टिस से एक्चुअली नॉट ओनली प्राणायाम बट इवन आसनास, जैसे कि मैंने काफ़ी ट्विस्टिंग पॉस्चर्स करने शुरू किए, तो उस ट्विस्टिंग पॉस्चर से मेरी जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज थे, वो रिजॉल्व होने लग गए। मैं थोड़ा खाना बराबर से खाने लग गई क्योंकि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, तो खाना खाने के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता था उसके लिए। तो वो पॉस्चर्स जो मैं करने लगी उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ और इससे धीरे धीरे मेरी प्राणायाम की प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो गई।
0: क्या बात है, तो आपकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट थी वो हमने देखी है, साक्षात देखी है हमने ये। तो दीप्ति, मैं फिलहाल तो वक्त हो रहा है एक गीत का, गीत के उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे बहुत से श्रोता हैं जो अक्सर ये सोचते हैं कि हमें योगा शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अरे अभी तो हम 50 के हो गए अभी तो क्या ही करना, तो ऐसे हमारे श्रोताओं के बारे में मैं बात करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि जब आपने शुरू किया था तब आपकी उम्र क्या थी और आज आप उन लोगों के लिए जो हर वक्त बस ये बोल के बात टाल देते हैं कि अरे अब तो हो गई, अब क्या करेंगे हम कुछ करके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।

0: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में हमारे साथ है दीप्ति। तो दीप्ति, मैंने आपसे पूछा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40-50 की उम्र में आके बोलते हैं अब हम क्या ही फिजिकल एक्टिविटी करें, क्यों एक्सरसाइज करनी, क्यों हम योगा करें, हमारा शेड्यूल इतना बिजी रहता है। खासकर की जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास हमेशा ये रहता है, अरे हमने आटा गूंद लिया एक्सरसाइज हो गई, हमने घर में पोछा झाड़ू कर लिया एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या योगा करने की कोई उम्र होती है?
1: एक्चुअली जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं 43 की थी, जब वो उम्र में मैंने स्टार्ट किया था योगा। मैं रनिंग 38 की उम्र में चालू कर दी थी, बट ऐसी कोई उम्र नहीं होती है योगा कि आप कभी भी चालू कर सकते हैं। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि ना, अभी जैसे हाउसवाइफ्स होती है वो घर के काम करती है तो उनको लगता है कि उनकी एक्सरसाइज हो गई। एक्चुअली हम देखो तो उनमें एक्सरसाइज नहीं होती, हम थकते हैं। पर आप जैसे योगा कैसा है कि हम जब योगा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स अंदर के स्टिम्युलेट करता है, हमारे हार्मोन्स को वो स्टिम्युलेट करता है, तो उसके कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी बॉडी की जो फंक्शन होती है उसको इम्प्रूव करता है। इसलिए जो हम लोग काफ़ी टाइम, अभी आप घर का काम कर रहे हो, ठीक है आपका थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, आप थोड़ी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, थोड़े पॉइंट्स आप दबा रहे हो, बट आपका फुली आप देखो आपका माइंड बहुत स्ट्रेस हो जाता है। पर योगा से आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देते हो, और इसके कारण मुझे लगता है कि योगा की कोई उम्र नहीं होती है। और स्पेशली 40s के बाद तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम है जब हम लोग अभी वुमेन स्पेशली मेनोपॉज में चली जाती है, और उसके कारण हमारा बॉडी का कैल्शियम और मसल लॉस वो सब बहुत होने लग जाता है। तो इसके कारण हमें क्या योगा से क्या, एटलीस्ट आप है ना अपने माइंड को स्ट्रेस से बैलेंस करोगे, प्लस हार्मोन्स को बैलेंस करके अपने मसल मास को, आप जैसे आसनास परफॉर्म करते हो तो आपके मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हो, और इसके कारण आप जैसे उज्जयी क्रिया की आपने, तो इससे आपका कैल्शियम और आयन का कैल्शियम और आयन का भी इंटेक बराबर हो जाता है, उससे वो अपने को हेल्प कर लेता है।
0: तो ये उज्जयी क्रिया जो आपने बोला ये है क्या?
1: उज्जयी क्रिया एक प्रकार का क्रिया है जो हम गले से सांस लेते हैं और गले से छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो मेटाबॉलिक ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको हेल्प करता है सही फंक्शन करने के लिए। और जब वो सही फंक्शन करता है तो हमारी जो बॉडी के जो कैल्शियम आयन जो विटामिन हमारे बॉडी को जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वो उनको हेल्प करता है अब्जॉर्ब करने में अपने बोन्स और अपने मसल्स में।
0: दीप्ति, कई लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक अच्छी शुरुआत नहीं मिलती, उन्हें समझ नहीं आता कि योगा की शुरुआत कैसे करें, बाहर जाने का, टीचर्स पे जाने का उनके पास टाइम नहीं होता, कभी कभी ऑनलाइन भी वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर योगा की शुरुआत करनी है तो वो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं?
1: ये एक्चुअली पहले तो आपको माइंड को अपने रेडी करना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, राइट? और सेकेंडली जब आपको कुछ करना है तो आप बेसिक शुरुआत करिए, जैसे एक बेसिक सूर्य नमस्कार से शुरुआत कीजिए। और योगा ज़रूरी नहीं कि आप एडवांस पोस्चर्स ही करिए या आप एक घंटे की प्रैक्टिस करिए, आप 10 मिनट का या 20 मिनट का भी आप थोड़ा सा योगा करिए। जैसे एक बेसिक आसन होते हैं, आप बैठिए, फॉरवर्ड बेंड्स करिए, फिर मत्स्येन्द्र आसन करिए, जैसे दो मतलब चार पांच जैसे आसन है जो बेसिक जो आप डेली रूटीन में कर सकते हो। सूर्य नमस्कार जैसे कि आप पहले दो सेट से चालू कीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए, जैसे 5 सेट, फिर 10 सेट, जैसे आज काफ़ी लोग अभी 108 सूर्य नमस्कार भी करते हैं, उसमें आपका पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, आपकी कैलोरी बर्निंग हो जाती है, और ये कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी अच्छा है।
0: दीप्ति, ब्रीदिंग का कितना योगदान रहता है योगा में?
1: तो हर एक आसना में हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। तो हम जैसे कि अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, अगर हम बैक ऊपर देख रहे हैं तो हम इनहेल कर रहे हैं। हर मूवमेंट योगा में एक ब्रीदिंग के साथ ही किया जाता है। तो इसमें ब्रीदिंग मतलब 100% आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो उस पर,
0: क्योंकि कई लोगों को ना ब्रीदिंग का जो इशू है वो समझ नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि कब उन्हें इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। तो ऐसी कोई ट्रिक भी योगा में सिखाई जाती है कि आपको कब, या ब्रीदिंग का असर पड़ता है? जैसे अगर मैं सपोज ब्रीद इन कर रही हूँ लेकिन उस वक्त ब्रीद आउट करना होता है, तो क्या उस गलत चीज से गलत सांस लेने की वजह से कुछ फर्क पड़ता है?
1: काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम जैसे नीचे देख रहे हैं और आपने इनहेल कर दिया तो आपको एक सफोकेशन की थोड़ी फीलिंग आ जाती है। मे बी आप स्ट्रेच बराबर से नहीं कर पाते हो और फिर आपको लगता है कि मैं नीचे क्यों नहीं झुक पा रही हूँ, यू नो। तो वो थोड़ी सी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आप अपने टीचर और ट्रेनर से गाइडेंस के साथ करिए, और कोई आजू बाजू क्लास है या तो फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं उनको फॉलो करिए, तो आप इस टेक्निक को एक बार समझिए और उसको सही तरीके से कीजिए।
0: तो बिना गाइडेंस के योगा करना अपने लिए किसी गलत चीज़ को बुलावा दे सकता है, ऐसा हो सकता
1: है? आपको अगर नहीं टाइम है बाहर जाने का तो आप घर बैठ के भी आप अपना ऑनलाइन कितने सारे क्लासेस चल रहे हैं उस पे कर दीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा उससे।
0: दीप्ति, इसके आगे हम बात करेंगे आपसे कि योगा के साथ खाना पीना जो है किस तरह का होना चाहिए और क्या जरूरी है, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं साथ ही साथ में, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, और कुछ ऐसे इजी आसन के बारे में जानना चाहेंगे जो एकदम बिगिनर लेवल के लोग कर सकते हैं घर में बैठकर। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हमारी ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

0: चोरी चोरी सपनों में कोई आए ना आए, लेकिन चोरी चोरी बीमारियां जरूर आ जाती हैं। और अगर आप एक निरोगी तन और स्वस्थ काया चाहते हैं तो आपको योग की तरफ झुकना जरूरी होगा, या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, जो आप अपने घर के अंदर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सही कहा मैंने दीप्ति जी?
1: यस, एकदम सही।
0: दीप्ति जी, कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि घर पे बैठ के अगर उन्हें शुरुआत करनी है तो शुरुआत में ऐसे कौन से सिंपल आसन हैं जो वो कर सकते हैं जिससे कि उनकी ब्रीदिंग भी अच्छी हो और थोड़ा उनकी तबीयत भी जो है सही रहे, क्योंकि आजकल हेडेक, बैकएक, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है लोगों की लाइफ में, पार्ट एंड पार्सल बन गया है उनकी जिंदगी का। तो ऐसे कौन से आसन हैं?
1: एक्चुअली अभी जो स्ट्रेस लेवल अब देखो तो बहुत हाई है, तो इसके सामने मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको डेली जो मतलब डिजीजेस से लड़ना है, जैसे ब्लड प्रेशर एक कॉमन हो गया है, थायराइड एक कॉमन हो गया है, डायबिटीज एक सबको होती है।

0: वो आप गूगल भी करोगे तो आपको इसकी टेक्निक मिल जाएगी, वरना आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ। इसमें आपको राइट हैंड यूज़ करना है और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, और राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। आप लेफ्ट से शुरू करते हो और या और लेफ्ट से छोड़ते हो, मतलब एंड
1: एक
0: लेफ्ट से
1: साइड से
0: करते हो।
1: सांस लेनी
0: हाँ,
1: है, एक साइड से छोड़नी है, और एक साइड से ऐसे 10 या 15 सेट करने
0: ये
1: होते हैं, एंड देन
0: आप
1: ऑपोजिट।
0: मिनट्स पे रखो ना, 5 मिनट तक करते रहो। इससे आपका माइंड का फोकस इम्प्रूव हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम सही से बैलेंस हो जाएगा, तो आपके जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। और इसके साथ में आप थोड़े से बेसिक आसनास अगर कर सकते हो, जैसे बहुत बेसिक है, जो आप 20-20 सेकेंड्स होल्ड कर दीजिए, जैसे आप बैठे हो बेड पे, या तो आप ज़मीन पे बैठ सकते हो तो ज़मीन पे बैठिए, और उसके लिए आप पैर सीधे रख के एक फॉरवर्ड बेंड कर लो। इससे आपका पूरा लेग्स, आपका बैक और आप पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, और प्लस स्टमक को एक स्क्वीज कर लेगा तो स्टमक के मसल्स को मसाज मिल जाता है उस वक्त। और उसके बाद आप एक भुजंग आसन कर लीजिए, उल्टा लेट के। आपको सिर्फ हाथ अपने चेस्ट के बाजू में रख के सिर को उठाना है, चेस्ट को, शोल्डर्स को उठाना है, और बैक को पूरा स्ट्रेच करना है। तो एक भुजंग आसन कर लीजिए, फिर आप एक वज्रासन कर दीजिए। वज्रासन इज लाइक वेरी सिंपल पॉस्चर जो हम खाना खाने के वक्त भी कर सकते हैं। आप है ना, लेग को उल्टा रख के बैठ जाइए अपने,
1: घुटने का बल बैठ के पैर फोल्ड करके बैठते
0: हाँ
1: हैं इसमें
0: पैर
1: वैसे।
0: पैर को फोल्ड करके आप बैठ जाइए, और जस्ट आप 2 मिनट बैठिए। उसमें आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। इससे आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है और आपकी एंकल को स्ट्रेच मिल जाता है, और घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बेसिक आसन है जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, मल्लासन, बिकॉज जो बोलते हैं ना इंडियन टॉयलेट पोज, वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका जो पेट की मसाज होता हो जाती है, डाइजेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। फिर इससे घुटने, अपने लेग सब कुछ स्ट्रांग होता है, और प्लस इसको बैक को भी स्ट्रांग करता है इसके कारण। तो और आप ये भी कर सकते हैं ट्री पोज, इट्स अ बैलेंसिंग पोस्चर। एक लेग पे खड़े रहना है आपको ट्री के जैसे, और दूसरा पैर आपके लेग के ऊपर टका हुआ है। तो आप ये सब आश्चर्य, अगर आपको पोस्चर चाहिए तो आप भले गूगल करके आप देख सकते हो कि कैसे तरीके से इसको किया जा सकता है।
1: अच्छा दीप्ति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगा और आपके खाने की जो रूटीन होती है वो कहाँ तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या हम कुछ भी खा के योगा करें तो बैलेंस हो जाता है, ऐसा कुछ है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने, डाइट प्लेज द मेजर रोल, मतलब आप है ना 70% आपकी हेल्थ डाइट पे डिपेंडेंट है। अगर आपकी डाइट सही है तो आपका आदि बीमारियां तो ऐसे ही निकल जाएगी। जैसे कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो, आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो सीधा अगर आप चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, आप पूरा एसिड भर रहे हो बॉडी में। और जब एसिड पहले आ जाता है, क्योंकि आप पूरी रात आप भूखे पेट सोए हो, तो 8 घंटा जब आपके पेट में क्या होता है, एसिड, और आप जब उठ के सीधा चाय पी रहे हो तो आप डबल एसिडिक बना रहे हो उसको, सिस्टम को। तो आप दिन की शुरुआत एक सही तरीके से कीजिए, आप एल्कलाइन तरीके से कीजिए, जैसे कि आप हल्दी और काली मिरी का जो पानी है, गर्म पानी, वो पीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। अगर काफ़ी लोगों को लेमन नहीं सूट करता है तो आप बिना लेमन का भी वो गर्म पानी पी सकते हैं। प्लस आप उसके बाद थोड़े से नट्स खा लीजिए, क्योंकि फैट्स है, मतलब जैसे 3 बादाम हो गए, दो अखरोट हो गए, ऐसे कुछ खाइए ताकि आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करे और स्टमक आपका एल्कलाइन हो जाए। और फिर आप एक फ्रूट खा लीजिए, कोई भी अच्छा फ्रूट, जैसे नॉट सिट्रस फ्रूट इन द मॉर्निंग, यू कैन ईट सम एप्पल और पपैया और अ पेयर और बनाना, एनी फ्रूट विच यू लव वो खा लीजिए आप। और वैसे ही धीरे, और जो भी आपका दिन भर पोषण है, जैसे आप ब्रेकफास्ट में अगर कुछ खा रहे हो या लंच में कुछ खा रहे हो, पोषण कंट्रोल रख के वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। प्लस आप क्या खाना खा रहे हो वो आप, अब ये जो आउटसाइड जो फूड है वो थोड़ा अवॉइड करेगी तो
1: जंक फूड
0: बेहतर
1: अवॉइड
0: है,
1: करना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: थोड़ा बेहतर है। पैकेट फूड्स आर नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी, आई मीन आई रियली डोंट प्रिफर पैकेट फूड्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो मैं नहीं प्रिफर करती वो सब। तो अगर आपको एक योगी बनना है या एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आप अपने डाइट पे खास करके ध्यान दीजिए। और जब प्राणायाम की क्रियाज वगैरह करते हो तो आपको खाली पेट बैठना है, खा के नहीं, आप एक ग्लास भर के पानी पी सकते हो बट आप खा के नहीं बैठ सकते तुरंत।

0: अच्छा दीप्ति, जब बात हुई है जंक फूड की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, योगा सिखाने से पहले, योगा सीखने से पहले आप कितना जंक फूड खाती थी और क्या बदलाव आया है आपकी इस रूटीन में?
1: एक्चुअली मैं एक फूड लवर हूँ, तो मैं सारे तरह का जंक फूड खाती थी। जैसे कि मैं 500 ml की पेप्सी की बॉटल एक मिनट में खत्म कर लेती थी। इतनी मैं अपना डाइट का ध्यान नहीं रखती थी। बट फिर मुझे जब एच पाइलोरी हो गया, जैसे स्टमक पे एक इन्फेक्शन हो गया, उससे मेरा रेगुलर पेन था 4-7 years वो चला, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कितनी सारी चीजें बंद करनी पड़ी। और जब मैं एकदम सात्विक बन गई, तब मेरा ये पूरा बीमारी बिना मेडिसिन के रिजॉल्व हो गए।
0: क्या बात है। तो अब हमारे जितने भी तमाम सुनने वाले हैं, आपने सुना कि आपको ये जंक फूड होते हैं, जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये सब नहीं लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमारी बीमारी की सबसे बड़ी वजह यही चीज़ें होती हैं। बच्चों में योग क्या फ़ायदे कर सकता है, इसके बारे में हम दीप्ति से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है गीत का। गीत के उस पार एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हमारी बातें चलती रहेंगी यूं ही दीप्ति जी के साथ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: वेलकम बैक। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है दीप्ति, तो सबसे पहले तो अभी जो हमने बात की थी बच्चों के बारे में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए ये योग कितना कारगर साबित होता है, कितना अच्छा होता है।
1: एक्चुअली अभी देखें तो बच्चों में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है छोटी उम्र से, तो हम और बच्चे हैं ना एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ना हम छोटे बचपन में ही अगर उनको कुछ अच्छा सिखा दें तो वो लाइफ टाइम तक उनके अंदर रह जाता है। तो अगर आप योगा अभी छोटी उम्र से ही उनको शुरू कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो अभी से ही वो जल्दी से अडेप्ट कर लेंगे ये प्रैक्टिस को। जैसे आप प्राणायाम सिखा रहे हो तो उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई का फोकस जो है वो बढ़ जाएगा, वो मतलब काफ़ी अच्छा हर चीज़ में उनका माइंड काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा अभी से ही। और माइंड के साथ साथ अगर वो आसनास भी प्रैक्टिस कर रहे तो उनका ऑब्वियसली फिजिकल बॉडी भी काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग बनेगा बचपन से ही। तो इन बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं हर चीज़ को, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली छोटे हैं और उनके लिए हर चीज़ नई होती है, तो उनको एक मज़ा भी आता है उस चीज़ का।
0: तो योग अगर करते हैं तो उनका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। मेन रीजंस बच्चों में योग को प्रमोट करने का एक ये बहुत अच्छा कारण है। बिल्कुल सही। तो दीप्ति जी आप यहाँ पर आई और सुबह सुबह आई, इतना ट्रैफिक में आप यहाँ पर आई तो, और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए, तो

0: इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ और ज्ञान के मोती देना चाहें तो
1: मैं यही बोलूंगी कि आप सब लोग योगा शुरू कीजिए, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप 40 के हो या 30 के हो, एज की कोई उम्र नहीं है, मतलब योगा के लिए कोई उम्र नहीं है, आप सिर्फ योगा शुरू कीजिए। और मुझे ऐसे लगता है कि हम सब, चलो आप जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, मैं भी सब करती हूँ, बट मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि योगा में एक कंप्लीट पैकेज है। आपको माइंड से लेके, बॉडी से लेके, सोल के लिए, सबके लिए एक पैकेज बनाया हुआ है योगा आपके लिए। उसमें आपको जो चीज़ हील करनी है, जैसे अगर आप डिप्रेशन में हो, लाइक काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी की इश्यूज होती है, तो योगा हेल्प करता है, बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी। और जैसे कि अगर आप कोई बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको थायराइड है, तो ऑब्वियसली जो दो तीन आसन है, जैसे कि उष्ट्रासन थायराइड को बैलेंस करता है, मंडूकासन है जैसे डायबिटीज़ को बैलेंस करता है, तो आपको ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब हेल्प करती है। आई मीन योगा इज़ अ कम्प्लीट पैकेज, आई वुड ओनली से कि इसकी कोई उम्र नहीं है, आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हो।
0: और योगा अनंत है, असीम है, मतलब आप इसमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतने ही इसके फायदे और मिलते जाएंगे।
1: यस, बिल्कुल, इसके काफ़ी फायदे हैं। और जो आई मीन आप एक बार शुरू करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं इसमें और आगे बढ़ूँ, जैसे मेरे साथ हुआ। जैसे मैं भी पहले रनर के जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहले रनिंग से स्टार्ट किया था मेरी जो फिटनेस की जर्नी है, फिर मैंने जिम चालू किया, अब फिर जब योगा चालू किया तो ऐसे लगता है कि इसमें कितना कुछ सीखने का है, और मैं अपनी पढ़ाई और आगे कर रही हूँ अभी इसके लिए।
0: क्या बात है दीप्ति जी, तो आप आगे पढ़ाई करते जाइए, और हमारे जितने भी तमाम श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने आपके लिए भी बेस्ट विशेष भेजे हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, उन्हें आपके द्वारा दी हुई जानकारी काफ़ी पसंद आई। पंकज मौहर जी हैं जिन्हें आपकी जानकारी काफ़ी पसंद आई। विजेंद्र घटोल जी हैं अकोला से। प्रदीप अनंत कृष्णन जी हैं। प्रणव शिंदे जी हैं। महेश भाटकर जी हैं। प्रवीण भाटकर जी हैं। श्रेय राउत जी हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार है। आर्य मिलेश राउत है, ये पाढ़ा टिघरे से हमें लिखते हैं। देन शिवनाथ जाखरे हैं। प्रमोद चिंचोलकर हैं। वैदही जी हैं। बाबा दादर से हैं। महेश बोहरा जी हैं। चेतन कुमार जी हैं। रजनीकांत पाटिल जी हैं। वैष्णवी खुटले जी हैं। इन सब ने आपको इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक्स बोला है दीप्ति। और
1: ग्लैड कि सब लोग ने सुना मुझे आज।
0: तो बस आज से ही आपके जीवन में ये चेंज आना चाहिए और योग को अपने जीवन में अपना लीजिए। 21 जून को है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उस दिन भी सब आप चाहें तो एक शुभ शुरुआत कर सकते हैं।
1: यस, और काफी इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज एनरोल कीजिए और योगा की शुरुआत कीजिए।
0: बिल्कुल, थैंक यू दीप्ति हमारे साथ आने के लिए। फिलहाल वक्त नहीं है, वरना आपसे बहुत कुछ जानना था। आप अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी काफी अच्छे से जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत सारे आप टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो हमारे श्रोताओं के लिए जाते जाते कोई छोटी सी ट्रिप,
1: बस स्टे फिट और स्टे हेल्दी, और योग करते रहिए, और डाइट पे खास करके ध्यान दीजिए, और जितना हो सकता है सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अगर क्लीन है और स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
0: बिल्कुल, और आपके एरिया में गंदगी की और जंक फूड्स की बिल्कुल नो एंट्री होनी चाहिए। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक 11 बजे समाचार है, समाचारों का इंतजार कीजिए, और निखिल के जो खास गेस्ट आने वाले हैं वर्ल्ड एल्डर डे अब्यूज, इसके बारे में बात करने के लिए, तो वो होगा 12 बजे से, तो आप उसके लिए इंतजार करते रहिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफो के बात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की दो दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। समाचार में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण इलाके में हुए एक हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। श्री गुतरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समाचार के अंत में, फीफा विश्व कप 2026 में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है, वही ग्रुप एफ का पहला मुकाबला जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एफ के एक अन्य मुकाबले में आज ट्यूनीशिया और स्वीडन आमने सामने होंगे। ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कार्बोवर्डे से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है ब्रेक फ्री होने के लिए। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है ब्रेक फ्री और हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है आरजे डॉक्टर निखिल शास ने। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप सभी के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और वेरी गुड मॉर्निंग विजेंद्र घाटोल, विजय माहूबिया, शुभदा, वेरी गुड मॉर्निंग प्रकाश शिंदे, पंकज मोहोड़, प्रिया छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है और शुभलक्ष्मी मस्तकर भी हमारे साथ है। तो महफिल में स्वागत है और ब्रेक फ्री में हम बातें करते हैं कि जो परंपरागत पद्धति है उससे हम कैसे अपने आप को तोड़ते हैं और नई चीज़ों को अपनाते हैं। तो इसी थीम पर हमारा ब्रेक फ्री ये कार्यक्रम होता है। तो और आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही एक जो हमारी आदत थी उससे हमने ब्रेक फ्री किया और आज हम एक नए दौर में उस वजह से पहुंच गए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो हम मोबाइल पे ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन जिसे हम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा कुछ तकनीकी बात हम नहीं करने वाले, सिर्फ मुझे ये जानना था कि आपने आपका फर्स्ट जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है यानी मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कब किए, कैसे किए, अगर कुछ याद है तो आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि आजकल तो सब्ज़ी खरीदने के लिए भी हम मोबाइल से ही पैसे देते हैं। तो याद कीजिए कि पहला आपने मोबाइल से या मोबाइल वैलेट से कब आपने पेमेंट किया था और इसी बात पे थोड़ा सा मज़ा मस्ती भी उसमें होती है, कई बार किस्से भी हो जाते हैं इससे। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं हमारे प्यारे कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। तो आइए सुनते एक छोटा सा विज्ञापन और हमारा कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
6: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
7: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

दोस्तों कार्यक्रम जारी है ब्रेक फी मेरे यानी आज डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास्त्री के संग। और जी हाँ, आप सभी के प्यारे प्यारे संदेश हमें मिल रहे हैं और हमारी बातें चल रही है डिजिटल इंडिया इस दौर के बारे में। जी हाँ, जहाँ जो है कभी कभी पैसे या चिल्लर हमारे पास नहीं होते तो झट से हम मोबाइल निकाल लेते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर मैंने आपसे पूछा था, क्या आप बता सकते हैं कि पहला ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र पैसे देने का प्रयास कभी किया था, उसमें क्या उससे कुछ जुड़ा हुआ किस्सा कुछ है तो हमें ज़रूर बताइए, उससे मज़ा आएगा। तो हमारे जो दोस्त है वाड़वंड से रजनीकांत पाटिल हमें लिखते हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने पहली बार 200

को यूपीआई से पैसे भेजे थे, क्योंकि उन्होंने 200 रुपए का पेट्रोल डाल के दिया था, तो वो उनका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। शुभलक्ष्मी मस्तकर, इनका भी मैसेज आया है और मैं आप सभी के संदेश तो आपको आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी, और मुझे भी अभी अभी याद आ रहा है कि मैंने कैसे मेरा पहला ट्रांजेक्शन किया था। गांव से आया था मैं और रात में बहुत देर हो गई थी, तो कैब बुक करने के लिए मैंने पहले वो कैब का जो एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड फर्स्ट टाइम किया, कैसे करते कुछ करते हैं। जनरली मैं कभी ऑनलाइन पेमेंट करने से थोड़ा झिझकता हूँ, क्योंकि एक बार मोबाइल का रिचार्ज मारते समय मेरे पैसे चले गए, मतलब ना वो बैंक के पास पहुँचे ना वो मोबाइल कंपनी के पास पहुँचे, तो वो जो सौदा हुआ उसका जो डर था वो बैकग्राउंड में चलता ही था। पर रात का समय था तो बोला चांस लेते और एक घंटे के बाद जो है वो मैं कैब बुक कर सका और घर लौट सका। तो एक खुशी भी थी कि घर पहुंच गया, और एक दूसरी खुशी थी कि अरे वाह, मैंने ऑनलाइन कैब बुक की, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए। तो जी हाँ, आपका पहली बार कैसा था हमें यही बताइए FM रेनबो पर। और महेश बोहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रेय राउत, राजेंद्र परमार हमारे दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं इंदौर से, हमारे दोस्त अजय साखरे भी महफिल में शामिल हो चुके हैं, तो स्वागत है आप सभी का। और भंडारदरा से हमारे दोस्त दिलेश भी है, वंजारी हमारे साथ है। तो आइए गाने का भी लुफ्त उठाते हैं, आपके साथ संगत का भी जो है लुफ्त उठाते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, मेरे कार्यक्रम में जो है प्लेलिस्ट कभी फिक्स नहीं होती, इसलिए आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी अगर गाना याद आता हो तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज दिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता है 8657661071, यानी 8657661071। और दिल की बात आपसे साझा कर रहा हूं इस गाने में, वो है जी हाँ, हम आपसे बहुत

0: दोस्तों, फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में हमारी बातचीत चल रही है और आप सभी के संदेश, प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं अयास चौधरी कुर्ला से, वो कहते हैं कि उन्होंने भी, उनका पहला जो ट्रांजैक्शन है वो अपने दोस्त को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तभी ऑनलाइन जो है 200 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे। तो 200 ये मैजिक नंबर है लगता है, 200 से शुरुआत हुई थी और दूसरा भी नंबर 200 का ही है। राजस्थान से हमारे जो दोस्त है महेश बोहरा लिखते हैं कि उन्होंने भी पेट्रोल पम्प पे उन्हें सिखाया गया कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। तो उन्होंने जो UPI के थ्रू पेट्रोल भरवाया और जो पेट्रोल पंप का कर्मी था उन्होंने सहायता की और धीरे धीरे उन्हें सब समझ में आ गया। तो जी हाँ, बातें करेंगी उस पहले ट्रांजैक्शन की और उसकी यादों से जुड़ी हुई बातें करेंगे और जिससे हम कैश फ्री हो गए हैं, ब्रेक फ्री कर दिया जो हमारा डिपेंडेंस था नगद से। सुनते हैं एक छोटा सा विज्ञापन।
1: आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रेक फ्री कार्यक्रम में बंधनों को तोड़ने, हम आज बंधनों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ब्रेक फ्री होने की बात कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग, तेलंगाना से हमारे जो दोस्त हैं शंकराचार्य, वो भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे जो दोस्त हैं सुरेश पाटिल और अविनाश, लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम उनका जो UPI ट्रांजैक्शन था वो भी लॉकडाउन में ही था। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपना UPI या फिर बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने की जो अभी जो आदत हमारी बन चुकी है उसकी शुरुआत लॉकडाउन से हो रही है, ऐसे समझ में आ रहा है। और हमारे दोस्त प्रणव शिंदे लिखते हैं कि उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने डीजल ख़रीदा था। तो काफ़ी हमारे दोस्त जो है, ऐसा सर्वे में मालूम होता है कि पेट्रोल पंप ने बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीखा है। और 200 भी लकी नंबर हैं, तो 2-3 बार 200 के ट्रांजैक्शन से शुरुआत हुई है, क्या बात है। और हमारी जो दोस्त है शुभ लक्ष्मी मस्तकर, उनका भी मैसेज आया, तो उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो किराना ख़रीदने के लिए किया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक अलग रिस्पांस आया है दर्शन का, संजय दर्शन का रिस्पांस ऐसे है कि आज तक उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है। हाँ, तो बहुत ख़ास बात है कि मुझे

लगता था सिर्फ मैं ही इस गुट में रहूँगा, पर नहीं, मेरा दोस्त संजय दर्शन भी इसमें शामिल है। पर जी हाँ, वो लिखते हैं कि मैंने मेरे तरफ से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब तक नहीं किया, पर यूपीआई पेमेंट का वो स्वीकार करते हैं, मतलब पैसे लक्ष्मी जी को आने देते हैं पर यूपीआई पेमेंट नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो जी हाँ, आपसे

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी दोस्तों, ब्रेक फ्री कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी है कि पहला हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है पैसों का, वो कैसे किया था, क्या आपको याद है, ये सवाल है। तो हमारी जो दोस्त है वरई से, अशोक पाटिल, वो लिखते हैं कि उन्होंने पहला ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सुपरमार्केट में किया था। तो जो सुपरमार्केट का कैशियर था, उन्होंने ये ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी और मदद करके वो ट्रांजैक्शन उन्होंने किया और धीरे धीरे हौसला उनका बुलंद हुआ और डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, और हमारे दोस्त वसई से राम प्रजापति लिखते हैं कि उन्होंने पहले बार पैसों का ट्रांजैक्शन जो है वो घर की लक्ष्मी को ही किया था। जी हाँ, मतलब पहली बार जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो अपनी पत्नी को ही उन्होंने किए। तो फिर एज एन एक्सपेरिमेंट भी हमने पहली बार जो है ट्रांजैक्शन, हम ये भी देखते हैं कि पहले पैसे भेजते समय पहले 1 रुपया कुछ लोग जो है वो पेमेंट करके देखते हैं, अगर मिल गया क्रॉस चेक करते हैं, फिर पूरी अमाउंट वो ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ढेर सारे किस्से होते हैं। तो आपका किस्सा क्या है, हम यहाँ सुन रहे हैं यही आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। कभी कभी गलती भी हो जाती है, पर गलती से ही जो है ज़िंदगी आगे बढ़ती है और गलती से ही हम सीखते हैं। तो यही किस्सा होता है आज और कल में, और प्यार तो बना ही है। लव आजकल का ये गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ब्रेक फ्री कार्यक्रम ने हमने जो हमारी यात्रा रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, पहले जो ट्रांजैक्शन की जो यादें हैं वो उसके बारे में बातें की, उसे याद किया और उसके थोड़े से मज़े भी लिए। तो हमारे जो दोस्त है फिरोज सिंगनपुरिया, उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गैस सिलेंडर बुक करने के लिए किया था। और इंदौर से हमारे जो दोस्त है अजय साखरे, वो कहते हैं कि उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन जो है वो उनकी बेटी बाहर गांव पढ़ने के लिए हॉस्टल में है, तो पैसे ट्रांसफ़र बेटी को किए थे। तो जी हाँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के। और हमारी जो दोस्त है आर्या डिसोलकर भांडुप से, वो लिखती है वो अभी अंडर 18 है, तो उन्होंने उन्हें डेट भी याद है, अक्टूबर महीने का 2025 में उन्होंने पहली जो है ट्रांजैक्शन किया था। तो मम्मी के फ़ोन से मम्मी ने उन्हें सिखाया और उन्होंने वो ट्रांजैक्शन किया था। तो जी हाँ, ढेर सारी यादें हैं और ज़िंदगी आसान हो गई है। और दोस्तों, अगले कार्यक्रम यानी म्यूज़िक कैफ़े, जो हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है जिसमें युवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज एक हमने खास प्रोग्राम आपके लिए प्लान किया है, क्योंकि आज 15 जून है और 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो इसके बारे में हमने और जानकारी लेने के लिए जो जीरियाट्रिक मेडिसिन नामक एक विभाग है, जैसा पीडियाट्रिक है बच्चों के लिए, वैसे जीडियाट्रिक भी है जो बुज़ुर्गों के लिए काम करता है, उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक रहता है और उनका ख्याल रखता है। तो उसके जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर प्रेम नरसिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हम जानेंगे कि ये विश्व बुज़ुर्ग दुर्व्यवहार क्या है, या फिर दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हम क्यों मनाते हैं, ये दुर्व्यवहार क्या होता है, ढेर सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जल्दी से लिख लीजिए, तो डॉक्टर साहब जब आएंगे तो व्हाट्सएप से हम आपके भी प्रश्न शामिल करने की कोशिश करेंगे। 8657661071 यानी 8657661071। ठीक 12 बजे हम समाचार सुनने वाले हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से जुड़ूंगा और हमारी बातें जारी रहेंगी। तो आइए, एक विदेश में जाते हैं तो पैसा ही हमारी पहचान होती है, मतलब पैसे को सब पहचानते हैं इस दुनिया में, तो हमारी गाड़ी किधर नहीं अटकती। तो जी हाँ, लक्ष्मी जी को याद करते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत हमने हरे राम हरे कृष्णा इस गीत से की थी। दोस्तों, अधिक मास शुरू है, पुरुषोत्तम मास शुरू है, तो आइए, उससे जुड़ा हुआ नहीं है पर लक्ष्मी जी पे बात हुई है, कृष्णा की भी हमने याद की है अधिक मास में, तो आइए जाते जाते एक प्यारा सा गीत सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से, और इसके बाद हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों ने शोक व्यक्त किया और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN, मैं फिर से वेबसाइट पढ़ता हूँ, NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। समाचार में आगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक है और अल नीनो की स्थितियों के असर के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में माइंड माइन समिट में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल की खरीफ फसल के मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। समाचार के अंत में, आज शेयर बाजार जोरदार तेजी के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स ने लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 66,725 पर सत्र की शुरुआत की, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23,985 पर खुला। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम म्यूज़िक कैफे में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम नरसिंह सर। डॉक्टर साहब स्वागत है कार्यक्रम में। आवाज़ सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब?
1: हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू।
0: हाँ डॉक्टर साहब का दोस्तों आपके साथ परिचय करा दूं। डॉक्टर प्रेम नरसिंह, आप जेरियाट्रिक मेडिसिन यानी वृद्धावस्था चिकित्सा कहिए या फिर जरा चिकित्सा कहिए, इसके अग्रगणी विशेषज्ञ हैं और आप सलाहकार हैं जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग के द विजडम क्लब के लिए। अब प्रमुख सलाहकार है जेरियाट्रिक विभाग, जिसे हम जरा चिकित्सा भी कहते हैं, जसलोक अस्पताल मुंबई, और वहाँ वरिष्ठ नागरिक सहायता समूह जिसे सीनियर सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, उसकी भी आपने स्थापना की है। डॉक्टर प्रेम की शिक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो डॉक्टर प्रेम ने पहले पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर उपाधि की ली है जेरियाट्रिक्स विषय में अमृता इंस्टीट्यूट से। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और लगभग 14 सालों से भी अधिक आपका चिकित्सा का अनुभव है। और डॉक्टर प्रेम की विशेष रुचि डिमेंशिया केयर यानी डिमेंशिया के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी देखभाल करना, जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यानी वृद्धावस्था में जो कैंसर की चिकित्सा होती है उसमें घर पर आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है, या फिर गिरने से बचाव जिसे हम फॉल प्रिवेंशन कहते हैं, शल्य क्रिया पूर्व और पश्चात देखभाल जिसे पेरी ऑपरेटिव केयर कहते हैं, और निवारण जरा चिकित्सा जिसे हम प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स कहते हैं, इन विषय में डॉक्टर प्रेम सिंह की विशेष रुचि है। तो डॉक्टर साहब फिर एक बार आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और ये जो विश्व बुजुर्ग दिवस है, दुर्व्यवहार दिवस है, वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं या फिर क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उसके पूर्व एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब आपसे जुड़ते हैं, चलेगा?
1: हाँ जी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक।
0: ओके सर, ऑल गुड।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा?
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
6: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
5: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
6: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: जी हाँ डॉक्टर प्रेम, आपका फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। तो पहला सवाल ऐसा है कि ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं, और थोड़ा बहुत इसका इतिहास हमें बता दीजिए, और इस साल की कोई थीम है तो वो भी कृपया हमें बताएं।
1: हाँ, तो सबसे पहले तो धन्यवाद और सबको गुड आफ्टरनून। जो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है वो इस मतलब काफी सालों से इस दिन में मनाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी जो थीम है इस साल वो है कि बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, मतलब सबको बताना तो है पर इसको कैसे हम रोक सकते हैं उसमें काम करना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोगों को और बता सके और जो ऐसे पॉलिसी बना सके जिसमें हम इसको प्रिवेंट भी कर सके। तो ये एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो पास्ट में इसका जो हिस्ट्री है ये WHO और यूनाइटेड नेशंस ने साथ में ये दिन जागरूक किया था कि मतलब इस दिन में हमें ये बताने की जरूरत है कि नहीं, बुजुर्गों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है से हमें ना ही रिपोर्ट करना चाहिए पर उसको कैसे हम रोक सके उससे ज्यादा हमें संदर्भ देना चाहिए। और ये इस दिन की बात तो है पर मेरे हिसाब से इसके बारे में हर दिन बात होनी चाहिए, ताकि हम ये जितना दुर्व्यवहार हो उसको कम कर सकें और जितना अच्छा व्यवहार और अच्छा शारीरिक मानसिक और सामाजिक वे में बुजुर्गों की मदद कर सके उतना अच्छा।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं, ये एल्डर अब्यूज यानी बुजुर्ग दुर्व्यवहार होता क्या है और इस शब्द का प्रयोग कब करना उचित होगा, इसके बारे में कृपया थोड़ी हमें बताइए।
1: हाँ, तो एल्डर अब्यूज होता यह है कि अगर कोई जानबूझ के या बिना जाने, जिसको हम नेग्लिजेंट, चाहे वो फैमिली का कोई हो, चाहे वो पेड अटेंडेंट हो या पेड केयर गिवर हो, जो किसी भी तरीके से कुछ भी हार्म या कुछ भी दिक्कत कराता है बुजुर्गों को, उसे हम एल्डर अब्यूज कहते हैं। इसमें ना ही फिजिकल अब्यूज होता है जिसको हम शारीरिक अब्यूज कहते हैं, इसमें मानसिक अब्यूज भी रहता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल मतलब पैसे की तस्करी करना, जिसका हक है उनसे उनको नहीं देना, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो बहुत ज्यादा होता है वो भी होता है, और एक बहुत ही घिनौनी चीज जिससे होता है उसको हम कहते हैं आपको सेक्सुअल अब्यूज, वो भी काफी हद तक होता है। तो ये वेरियस प्रकार है, पर इतना याद रखिए कि अपने बुजुर्गों को फोन भी नहीं उठाना और उसको कार्ड देना और बात नहीं करना, वो भी एक तरह का नेग्लेक्ट या अब्यूज ही है।
0: और डॉक्टर साहब, इसका प्रमाण हमारे समाज में कितना है, तो उससे हमें विषय की गंभीरता भी हम समझ सकेंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, 2021 में एक रिपोर्ट आया था हेल्पेज इंडिया का, और ये रिपोर्ट पैंडमिक के टाइम में फोकस हुआ था, इसलिए मैं उसको ज्यादा ये कर रहा हूँ। उसमें दिखा गया था कि 61.4% जो लोग थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पर उसमें अब्यूज ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम में, हालांकि लोगों को लग रहा था वो साथ में रह रहे थे तो अच्छा रहा होगा, तो वो तो कम था। फिर अराउंड 40% प्रिवेलेंस देखा गया सोसाइटी में इन जनरल, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 40 से 50% के एल्डर अब्यूज जो दुर्व्यवहार है तो कितनी ज्यादा मात्रा में है, और इसलिए हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, इसके कारण क्या है वो देखना चाहिए और इसको कैसे हम रोक सके देखना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी कि मतलब अलग अलग प्रकार के दुर्व्यवहार बुजुर्गों के साथ होते हैं, तो मोटे तौर पे हम समझ सके, इसलिए हमें वो शारीरिक और मानसिक बुजुर्ग दुर्व्यवहार का कुछ उदाहरण देके या उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे तो बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, जैसे किसी अपने कोई बड़े बुजुर्ग है उनको मारना, फिर उनको रोक देना, उनको एक रूम में बंद कर देना, खाना उन्हें नहीं खिलाना, अगर वो रात को सो नहीं रहे या किसी बीमारी की वजह से तो उनको ज्यादा दवाइयां दे देना ताकि वो बिना डॉक्टर को पूछे ताकि वो सोते रहे। फिर बहुत सारे टाइम ये है ना दिखते नहीं है बाहर शारीरिक वाले, जब नहलाते हैं, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो समझ में आता है भाई जिन चीजों को बोला गया था कि नहीं ये तो ऐसे ही गिर गए थे पर वो एक्चुअली उनको मारा गया है, तो ब्रूजेस देखना तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और मानसिक वाला जो है उसमें तो इमोशनल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे उनको धमकाना डराना कि देखो ये करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम क्या हो, क्या किया है तुमने, चिल्लाना चीखना, ह्यूमिलिएशन मतलब बोलना कि तुम बहुत बड़े फेलियर हो, तुमने कुछ भी नहीं किया इसलिए मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। फिर जब बुजुर्ग के दोस्त हैं जब वो आते हैं तो उनको मिलने नहीं देना, फिर उनको बाहर नहीं जाने देना, तो ये इमोशनल अब्यूज जो बोलते हैं ना कभी कभी जो दिखता नहीं है वो ज्यादा घाव करता है, और आपको फिजिकल अब्यूज तो काफी हद तक दिख जाता है।
0: और डॉक्टर साहब, आपने सेक्सुअल अब्यूज यानी लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में और आर्थिक दुर्व्यवहार के बारे में भी थोड़ी बहुत हमें उदाहरण सहित थोड़ी जानकारी दे दीजिए।
1: तो ठीक है, जहां तक सेक्सुअल अब्यूज की घिनौनी चीज है उसमें तो सेक्सुअल असॉल्ट या तो जैसे शारीरिक संबंध रखना बुजुर्गों के साथ उनके विल के अलावा, और इनअप्रोप्रिएट टच मतलब बिना पूछे बिना कहे कहीं भी छू देना। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल है, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डिमेंशिया है बुजुर्ग को और आप उनको बिना पूछे बिना बताए पब्लिक में उनके कपड़े उतार रहे हैं कपड़े डाल रहे हैं जब लोग हैं,

0: विश के बिना उनको ड्रेस कर देना, अनड्रेस कर देना, तो ये बिल्कुल ही सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आता है। बाकी फाइनेंशियल अब्यूज तो अभी आजकल के डेट में ऑनलाइन स्कैम्स में भी इतना ज्यादा हो रहा है, पर इसमें क्या हो सकता है, मिसयूज, उनका चेक, क्रेडिट कार्ड कैश आगे कर देना, फिर उनका सिग्नेचर साइन कर देना, विल चेंज कर देना बिना उनको बताए, जब वो अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो फाइनेंशियल अब्यूज केस में आते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हड़प लेना या उनको उनके घर से उनको ही निकाल देना, तो ये सब चीजें ज्यादा फाइनेंशियल अब्यूज में आती।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आप हमें समझा रहे हैं, विषय विषय की गंभीरता भी हमें समझ रही है। आपसे बातचीत जारी रहेंगी। सुनते हैं एक छोटा सा गीत, उसके बाद एक छोटा सा विज्ञापन, और फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी।
0: नहीं।

0: जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: दोस्तों, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे चल रहा है मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्त्री के संग, और बातचीत चल रही है डॉक्टर प्रेम नरसिंह जो कि प्रमुख सलाहकार है जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में, यानी जरा चिकित्सा विभाग, मुंबई के नामी अस्पताल में आप सेवा देते हैं। डॉक्टर प्रेम, आपसे आगे जाके ये पूछना है कि ये जो एल्डरली अब्यूज़ इसकी हम बातचीत कर रहे हैं, ये बुजुर्ग दुर्व्यवहार से कैसे बच सकते हैं हम, या फिर इसे कैसे टाला जा सकता है, इसके बारे में भी कृपया हमें जानकारी दे।
8: तो हम हमेशा ये जब भी लोगों को देखते हैं ऐसे, तो देखते हैं अंत में क्या हुआ है, जैसे मानसिक हुआ, शारीरिक हुआ, सेक्सुअल हुआ, फाइनेंशियल हुआ, और क्यों हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे केयर गिवर जो है, उनकी देखभाल जो कर रहे हैं, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे उनको कितना स्ट्रेस है, तो हमें पहले उनका स्ट्रेस एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक और चीज है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनके खुद के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या है, जब वो बचपन में थे क्या वो अब्यूजिव पेरेंट थे, उनको मारते थे, क्या ये फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बुजुर्ग को बुजुर्ग की मदद करने के लिए कि इससे पहले क्या हुआ है, और केयर गिवर स्ट्रेस को कम करना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिना जाने उस स्ट्रेस के वजह से इतना ज्यादा भावुक और उनके हाथ

0: हो जाता है कि वो बिना जाने अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे घर नहीं जाना, मुझे नहीं करना है, मैं केयर नहीं करूंगा उनका, और बस बोल देना कि मुझे आज, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, तो ये भी एक अब्यूज हो जाता है।
1: और डॉक्टर साहब, ये आपने इतिहास के बारे में बताया कि मतलब केयर गिवर जो देखभाल करने वाली व्यक्ति है और बुजुर्ग, इन दोनों के इतिहास का और क्या महत्व है, उसे जानना क्यों ज़रूरी है, उसका भी कुछ अगर उदाहरण दे जाए दिया जाए, या फिर आपने एक शब्द का प्रयोग किया केयर गिवर स्ट्रेस, तो इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में अगर हमसे बात की जाए तो।
0: देखिए, जो हिस्ट्री की बात, ये इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, हम जैसे ट्रीट कर रहे हैं हमारे बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रेन को, वो बहुत ही उनपे प्रभाव करता है। अगर शायद कोई भी उनको कुछ साइकेट्रिक इलनेस हो, या उन्होंने बहुत मारा हो अपने बच्चों को, या चीखना हो, चिल्लाया हो, तो अगर उनके संतुलन, मानसिक संतुलन पहले से ही काफी हिली हुई है कि नहीं ये सब मेरे साथ हुआ है तो मैं अभी क्यों केयर करूं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक तर्क होता है जो हमें देखना है। और दूसरी चीज है जो कैरियर स्ट्रेस आपने बोला, वो है ना, बहुत टाइम दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक जेरियाट्रिक्स में हम हमेशा करते हैं टेक केयर ऑफ द पर्सन बिहाइंड द ओल्डर एडल्ट, उसका मतलब है कि बुजुर्ग के पीछे जो है, जो कैरगिवर है, जो उनकी देखभाल करना है, उनकी देखभाल पहले कीजिए, नहीं तो कैरगिवर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। उदाहरण देता हूँ, डिमेंशिया के कोई पेशेंट है, उनको हर दिन याद नहीं रह रहा कौन कहाँ है, और उनके कैरगिवर दिन रात उनकी मदद कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, तो वो कैरगिवर स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि एक आधी बार वो या तो खुद ही खत्म हो जाएंगे, या तो बोलेंगे मेरे से अभी नहीं होगा। तो ये टाइम टाइम में चेक करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा केयरगिवर से भी बहुत ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि उनकी उनकी जो परिभाषा है, उनका जो उनकी जो दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहना, वो देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत अच्छे से आप हमें समझा रहे हैं कि विषय के बारे में, और बुजुर्ग के साथ जो होने वाला ये दुर्व्यवहार है, उसे कैसे पहचाना जाए, और पहचानने के बाद, समझ में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा हमें गाइडेंस दे दीजिए।
0: तो याद रखिए कि अगर कोई भी ऐसे चल रहा है हमें, तो हमें देखना चाहिए कि नहीं, क्या वो खुश है अपने घर पे रहते हुए, क्या उनका अच्छे से केयर हो रहा है। जैसे आप ओपीडी में या देखने हमें आते हैं, तो उनका हाइजीन देखिए, क्लोज देखिए, कम्युनिकेशन देखिए, पहले अच्छे भले थे, अभी इतने टाइम से दाढ़ी नहीं किया है, पता स्मेल आ रहा है, क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे, अपॉइंटमेंट खुद कैंसिल हुए जा रहे हैं, दवाई खरीदने को बोला था पर खरीद नहीं रहे। फिर अपने टीम को बोलिए कि वो बुजुर्ग को फोन कीजिए या विजिट करके देखिए कि कौन है, क्या है, कौन उनका कैरगिवर है, कौन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। फिर सडनली अगर उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल ही ठीक था, अभी खराब होते ही जा रहा है, तो ये सब चीजें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: और केयर गिवर का कैसे ख्याल रखा जाए, उसके स्ट्रेस का को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए।
0: सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि जब भी केयर गिवर को लग रहा है कि उनको स्ट्रेस है, तो एक डीप उनको एक ब्रीदिंग करना चाहिए, उनको थोड़ा योगा मेडिटेशन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए नहीं ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। अपना गुस्सा कंट्रोल में करना बहुत महत्वपूर्ण है, नींद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना कम नींद आएगी उतना ज्यादा इरिटेशन गुस्सा रहेगा। खुद की सेवा पहले कीजिए, फिर बुजुर्ग की सेवा कीजिए, स्वयं सेवा आप करेंगे तभी उनकी सेवा कर पाएंगे, अपने मेडिकल नीड्स, एक्सरसाइज, खाना समय पे खाइए, और एक सपोर्ट ग्रुप वो ढूंढिए, ताकि आप अपने मन की बातें लोगों को पूछ सकते, बता सकते, ताकि आपकी मदद हो सके। इतना याद रखिए, अगर फ्रस्ट्रेशन मन में रह जाए तो वो नासूर बन के बाद में दुर्व्यवहार की तरफ बढ़ सकता है। अगर फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात हो और उसके बाद वो सुलगने से पहले हम अगर उसका केयर कर सके, तो शायद हम अभी उसको भी निकाल देंगे।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक ही मिनट बचा है, तो जाते जाते हमारे दोस्तों को आप क्या संदेश देंगे, या कोई हेल्पलाइन अगर आप बता सके।
0: तो मैं संदेश ये दूंगा कि बुजुर्ग और केयरगिवर हमेशा, आप है ना, बीच में आइए, दो स्टेप आप लीजिए, दो स्टेप उनको लेने दीजिए। और कभी कभी बहुत सारे टाइम अब्यूज इसलिए होता है क्योंकि बातचीत ही नहीं होती है, तो बातचीत ज्यादा कीजिए, और बुजुर्गों को मैं बोलता हूँ कि आप गॉड कभी

0: क्लेम मत कीजिए कि ये वाले बच्चे ने ज्यादा फेवरेट था या ये, तो आप जब भी अपना विल बनाएंगे सबसे पहले खुद का देखिए और फिर देखिए किसी को भी कुछ देना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से आप झगड़े इनडायरेक्टली मत लगाइए। और बच्चों को मैं ये टिप देता हूँ कि हमेशा अपना केयर कीजिए अच्छे से, ताकि आप बुजुर्गों का केयर कर सकें।
1: थैंक यू डॉक्टर प्रेम नरसिंह, आपने आपके व्यस्त समय से समय निकाल के हमें इस महत्वपूर्ण विषय का गंभीर्य बताया और मार्गदर्शन किया। इसलिए हमारे आकाशवाणी मुंबई की तरफ से, एफएम रेनबो चैनल की तरफ से, हमारे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से, हमारी जो एफएम रेनबो की टीम है उसकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद। तो आगे भी आपको महत्वपूर्ण विषय में हम करके परेशान करेंगे और हमें मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, घड़ी में ठीक 12:29 हो चले, ठीक 12:30 हम सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम, एनसीईआरटी का उमंग कार्यक्रम हम सुनने वाले हैं ठीक 12:30। तो तब तक आइए एक छोटा सा गीत सुनते हैं। गीत तो नहीं हो पाएगा पर एक झलक तो हम ले लेते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक

0: भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छाँव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे

0: के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
1: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के

0: रास्ते में पड़ता है।
1: अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
1: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला।
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ।
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा माँ। आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
0: पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।

जी हाँ दोस्तों, बरसात की जो प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं, और इस गाने ने, गीता दत्त जी की आवाज़ और रफ़ी साहब की आवाज़ ने एकदम माहौल बना दिया है। और ये सारी जो गीत हम सुनने वाले हैं वो आप ही की फरमाइश वाले गीत होने वाले हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हिट एंड हॉट ये कार्यक्रम लिसनर्स चॉइस का कार्यक्रम है। यानी मैं बैक सीट पर हूँगा और गाड़ी का स्टेयरिंग जो है वो आपके हाथ में होगा। तो अशोक पाटिल वरेड़ी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ गीत अभी हमने सुना, और ढेर सारी रिक्वेस्ट है, देखते हैं किसका नंबर लगता है। तो संदीप कुमार, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, संजय पाटिल कहिए, मिंटू, पिंकी, लवली, आरती, शुभदा घाटोल, विजेंद्र घाटोल, उसके बाद महेश बोहरा, इंदौर से हमारे दोस्त अजय साकरे, और भी कई सारे दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी को ढेर सारा प्यार, याद प्यार, और साथ ही बहुत ही सुंदर अगला गीत, और आप का जो साथ है उसके बारे में क्या कहें। किशोर दा की आवाज में अलग है।

हिट एंड हॉट कार्यक्रम जारी है और खाना भी आप हॉट खाना खा रहे होंगे, शायद 1:15 हो चले हैं, खाने के प्लेट पर ही खाना खा रहे हो और साथ में ये हिट एंड हॉट संगीत सुन रहे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने से बात करने के लिए कोई विषय की आवश्यकता होती है क्या, आपको क्या लगता है? और समझो, कोई विषय ना हो तो भी क्या बात हो सकती है? हाँ, तो जरा सोचिए इस बारे में और व्हाट्सएप कीजिए, आपका आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। हाँ, जब बात करने के लिए कोई विषय ही ना हो, या फिर वैसे भी हम कहते हैं ना, अपने से बात करने के लिए विषय की कोई आवश्यकता वैसे होती नहीं है, तो क्या करते हैं ऐसे समय पर आप जब दोस्तों को मिलते हैं और कुछ विषय नहीं है, या परिवारजन से हम बार बार मिल रहे हैं, अक्सर मिल रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई बात नहीं है बात करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो हमें ज़रूर बताइए। और किशोर दा की ही कहीं गीत हम अभी सुनेंगे, किशोर दा को ही याद करेंगे, क्योंकि पल पल हमारे जो दिल के पास किशोर दा ही रहते हैं। तो पंकज मोहोड़, उसके बाद चेतन कुमार, शुभलक्ष्मी मस्तकर, हितेंद्र दास, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है।

जी हाँ, किशोर दा के सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। और बातें चल रही है किसी भी विषय पर, बातें नहीं चल रही है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे पास कोई विषय नहीं होता तो हम क्या करते हैं। काजल कक्कर हमारी जो दोस्त है चेंबूर से, वो लिखती है कि जब कोई विषय नहीं होता तो अक्सर इधर उधर की बातें या फिर शॉपिंग की बातें इन्हें बहुत पसंद है। फिर मतलब चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ज्वेलरी की बातें या अलग अलग जो इधर उधर की बातें ये करती हैं, इससे ये उनकी टेक्निक है। और भी कई सारे संदेश है, आप सभी के संदेश को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और रिक्वेस्ट तो उससे भी प्यारी होती है। तो कौन से गाने का चयन करें ये भी मुश्किल होता है। और हमारे जो दोस्त है अकोला से विजेंद्र घाटोल लिखते हैं कि उनका खाना हो गया है। जी हाँ, मेरा खाना होना बाकी है, पहले गीतों भरी जो थाली है वो मैं खा रहा हूँ और आपके साथ ये थाली जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे आनंद आ रहा है। तो आइए, ठीक 1:30 बजे दोस्तों हम समाचार सुनने वाले हैं, राष्ट्रीय मराठी समाचार हम सुनने वाले हैं। उसके बाद 1:40 पर हम फिर मिलेंगे और हमारा जो विषय है उस पर बातें करेंगे। तब तक जो है हमारे साथ कुल लगभग 6-7 मिनट है, उसमें 2 अच्छे से गीत आपको मैं सुना देता हूँ। लता दीदी की आवाज़ में सुपरहिट गीत हम सुनते हैं। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, एंजॉय करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हिट एंड हॉट कार्यक्रम में मैं आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास ने आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और हमारे संग जो है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमारे दोस्त गुरमीत सिंह, मीता और साथ में मीता जुड़ चुकी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और भी कई सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रणव शिंदे कहिए, अभिजीत गवाणकर, प्रदीप अनंत कृष्णन शुभदा है, और सभी हमारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से भी दोस्त जुड़े हैं, मुकेश कश्यप, चेतन कुमार, फिरोज सिंगनपुरिया, संदीप कुमार, दिग्दर्शन और कविता, संजय पाटिल, और बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके नाम पढ़ता हूँ तो बहुत प्यारा लगता है। ढेर सारा याद प्यार आप सभी को। और कुरला से अयाश चौधरी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी। आप सभी की रिक्वेस्ट है तो एक दूसरे की रिक्वेस्ट जब प्ले होती है तो ऐसे समझिए कि आपकी ही रिक्वेस्ट प्ले हो रही है, क्योंकि समय को जो है सीमा है, पर हमारा जो प्रेम है आपके प्रति उसको कोई सीमा नहीं है। तो आइए, बरसात की हम राह देख रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ रिक्वेस्टेड गीत सुनते हैं सुपरहिट मूवी लगान से। आशुतोष गोवारीकर की ये सुपरहिट फिल्म, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज साथ है।

जी हाँ दोस्तों, हम सभी बारिश की बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही गीतों का रस जो है मधुर रस पान भी कर रहे हैं। हमारे दोस्त हमें मैसेज करके लिख रहे हैं संजय पाटिल की, उनका भोजन हो चुका है और उन्होंने आम रस का सेवन किया है। तो जी हाँ, संगीत के रस के साथ आम रस, क्या जोड़ी है, जोड़ी नंबर वन। तो हीरामणि वर्मा कहिए और बेंजामिन भाईंदर से हमसे जुड़ चुके हैं, ढेर सारे हमारे जो दोस्त हैं जुड़ चुके हैं। और बारिश के गीत गीतों का भी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा जो झुकाव है बारिश के इंतज़ार से बारिश वाले गीतों में हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो मेरे भी जाने की घड़ी पास आ चुकी है, 1:50 होने ही वाले हैं। एक दो प्यारे प्यारे गीत हम सुन सकते हैं। और हमारी जो बातें चल रही थी कि जब कुछ विषय ना हो तो क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं आप, तो कई हमारे दोस्तों ने लिखा है कि वो छेड़ने लगते हैं एक दूसरे को, या चिढ़ाने लगते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर खाने पर चले जाते हैं, या फिर कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, चाय पीने, अदरक वाली चाय पीने चले जाते हैं। तो जी हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस है। और हमारे एक दोस्त लिखते हैं कि कभी कभी बस

खामोश रह जाते हैं और एक दूसरे का जो साथ है, एक दूसरे का जो प्यार है, वो हम नज़रों से बयां करते हैं और नज़रों को बातें करने देते हैं। तो आइए इसी सुंदर नोट पे मैं आज डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास ने आपको अलविदा कहता हूँ और फिर मिलेंगे किसी सोमवार। और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखना अब, और सभी को ढेर सारा याद प्यार, और हैव अ नाइस टाइम। आइए बैक टू बैक दो गीते सुनते हैं और ठीक 2 बजे जो है मिड डे न्यूज़ आप सुनेंगे, उसके बाद 2:15 पे दोपहर समाचार, और ठीक 2:30 पर मराठी कार्यक्रम होगा सला दोस्त हो बोलू काही। तो बाय बाय, टेक केयर।

0: The main event of IDY 2026 will be organized at the Red Road of West Bengal's historic capital city of Kolkata on 21st of June, where Prime Minister Narendra Modi will also lead the celebrations.
1: Adarniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji karenge.
2: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh today commenced commercial flight operations, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu said the airport will have the capacity to handle 1.2 crore passengers annually in the first phase, and the capacity is expected to exceed 7 crore annually after its completion. He said the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. A group of 170 farmers who gave their land for the airport, led by Jewar MLA Dhirendra Singh, along with others, boarded the first commercial flight from Noida International Airport, Jewar, to Lucknow. In a landmark move to protect children online, the UK government has banned teenager under 16s from accessing high-risk social media platforms. Prime Minister Keir Starmer described the move as a big moment that would bring real change for children and their future, saying the measures are aimed at giving young people their childhood back.
3: Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. This is not something I do lightly, and I will not present it as cost-free, as if social media has brought no benefits to young people, because clearly that is wrong.
2: In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at Monterrey Stadium in Mexico today. Sweden produced a dominant second-half performance to seal a convincing victory. The win gives Sweden a strong start to their World Cup campaign, while Tunisia suffered a heavy defeat despite reducing the deficit before halftime. In the other event for today, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranath Mandir in the evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. More from our correspondent.
4: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under Centenary Tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
2: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunder-squall conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's wholesale price index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
7: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
5: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है।

0: इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता

0: रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच

शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी की ऑफ बीट कमेंट्री अभी कुछ ही देर में आप हमारे स्टूडियो से सुन पाएंगे।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो आकाशवाणी मुंबई से। और आज आप देखेंगे और सुनेंगे अपनी आंखों के साथ साथ अपने कानों की दुनिया से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का सीधा प्रसारण, जो आज से शुरू हुआ है एनडीएफसी के कंपाउंड में, जिसे आयोजित किया जा रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और मैं हूं आपका दोस्त गई थांडा और मेरे साथ बनी हुई है नीता। नीता, बारिश की छमछम जो लेकर आई है, बताओ भाई आज ये मिफ का जो त्योहार हम मनाने वाले हैं एनडीएफसी के कंपाउंड में, उसके बारे में क्या कहोगी?
0: गुड इवनिंग मुंबई एंड गुड इवनिंग कैथ। यस, अ मैसिव हेलो टू एवरीवन ट्यूनिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। यू आर लॉक्ड इनटू 107.1 आकाशवाणीज एफएम रेनबो चैनल एंड वी आर कमिंग टू यू एब्सोल्युटली लाइव फ्रॉम साउथ मुंबई। द सिटी ट्रैफिक इज मूविंग अलोंग द कोस्ट, बट द रियल एपिसेंटर ऑफ क्रिएटिव एनर्जी टुनाइट इज राइट हियर ऑन रविंद्रनाथ्य मंदिर प्रभा देवी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेट इज ऑफिशियली ओवर।
1: बिल्कुल दोस्तों, मेरे ख्याल से आज हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो कमाल की बातें होने वाली हैं, क्योंकि आज ये कमाल की दुनिया 15 से लेकर 21 तारीख तक आपके सामने आ चुकी है। वैसे तो बारिश की जो छमछम होती है सिर्फ गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन सिनेमा के जो प्यारे होते हैं ना लोग, जो सिनेमा को दिल से जान से चाहते हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल बड़ा ही अनोखा है। और उनकी आंखों में भाई साहब मजा आता है जब आप इस तरह की खूबसूरत फिल्मों को देखते हैं। और आज की तारीख में तो इतनी खूबसूरत फिल्में आने जा रही हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। कोई ऑस्कर फिल्म है और कोई ऑस्कर नॉमिनी है, कोई ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर के, क्या कहोगे नीता?
0: एग्जैक्टली कैथ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ यू लव द रॉ पावर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, द प्रिसिशन ऑफ शॉर्ट फिल्म्स और द बाउंडलेस इमेजिनेशन ऑफ एनिमेशन, देन यू नो देयर इज ओनली वन प्लेस टू बी टुनाइट एंड दैट इज रविंद्रनाथ्यम मंदिर प्रभा देवी, द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, द 19th एडिशन।
1: बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जहां तक मुझे लगता है, मैं बात करूं कि आज जो फिल्में आने वाली हैं उनका नाम जो है वो इतना अनोखा है कि नाम से आपको लगता है कि आप शायद रियल लाइफ के हर किरदार को छू लो। जहां तक बात करूं पहली फिल्म के बारे में, टाइम एंड वाटर, ओ हो, मतलब स्क्रीनिंग के साथ साथ तुमने अगर तुमने देखा उसका ट्रेलर एनएफडीसी की साइट पे, तो भाई साहब बड़ा ही दिल छू जाने वाला है, बहुत ही क्यूट सा है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं तो आंखों को भाई साहब ठंडक मिलती है कि नहीं?
0: एंड इफ यू आर गोइंग टू मिस आउट वॉचिंग इट, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ समरी। सो टाइम एंड वाटर, इट इज डायरेक्टेड बाय सारा डोसा एंड इट इज about facing the death of his country's glaciers and the loss of his beloved grandparents, Icelandic writer Andri Magnusson turns his archives into a time capsule to hold what is slipping away. Family, memory, time and water. Time and Water is presented by National Geographic Documentary Films and Sandbox Films in association with Ninma Foundation.
1: बिल्कुल दोस्तों, फिल्मों की देखो जो कहानियां होती हैं, हम या डायरेक्टर मैं कहूं सिर्फ आंखों में सोचते हैं, सपनों में बुनते हैं, लेकिन जब वो सपनों की दुनिया सामने आती है तो भाई साहब ऐसा लगता है कि ख्वाब जो हैं वो हकीकतें बदल गए हैं। क्यों नहीं था, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं?
0: ऑफ कोर्स, डेफिनेटली कैथ। फॉर दोस जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, आई एम सो एक्साइटेड। इट्स नॉट जस्ट एनी इवेंट, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फेस्टिवल फॉर नॉन फीचर फिल्म्स इन ऑल ऑफ साउथ एशिया। इट्स इनक्रेडिबल टू थिंक दैट व्हाट स्टार्टेड बैक इन 1990 एज बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज इवॉल्व्ड इनटू दिस प्रेस्टीजियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बायएनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वी आर ऑफिशियली किकिंग ऑफ द 19th एडिशन टुडे ऑन द 15th ऑफ जून। द फेस्टिवल विल रन थ्रू द 21st एंड लेट मी टेल यू, द एयर हियर एट द रविंद्रनाथ मंदिर इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक, charged with the magic of cinema.
1: मुझे लगता है कि बारिश ना हर इंसान को चार्ज करती है, मतलब घर में बैठे और भाई साहब छमछम बारिश को देखते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। और जैसे ही आप बड़े बड़े मैगजीन्स के अंदर या फिर कहूँ सोशल मीडिया की दुनिया में एनएफडीसी या फिर मैं कहूँ मिफ का नाम सुनते हैं ना, तो भाई साहब दिल के अंदर वैसे ही जो है धुक धुक बढ़ने लगती है। अगर मैं टाइम एंड वाटर के अलावा तुम्हें दूसरी फिल्म के बारे में तो बताओ जो अगाप तो आने वाली है, भाई साहब फिलीपींस की वो फिल्म है, मतलब अगर आप देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि ये रियल है या फिर या कोई एआई है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एआई का जो दौर वो इस तरह से कवर कर रहा है कि आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि नौकरी तो नहीं चली जाएगी भाई साहब से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एआई लोगों को नौकरियां देगा भी, क्या कहती हो?
0: एग्जैक्टली, एज एन आंसर टू योर एआई इनसिक्योरिटीज, अगापितो डायरेक्टेड बाय अरविंद बेलरमिनो एंड काइली रोमेरो, सो इट द स्टोरी सेज ऑन द लास्ट

0: of the month, regulars drift into a worn-down bowling alley that has clearly seen its better days. Meera, the manager of the alley, moves through her closing-up routine, but she is distracted, waiting for someone whose arrival carries more weight than any ordinary visit. While talking about the filmmaker here, Filipino filmmaker Arvind Bellarmino is an alumnus of Locarno Filmmakers Academy and the Cine Foundation Residency at Cannes.
1: और बाकी इसके साथ साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म आने वाली है, और मैं तो सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, उन सबको कहना चाहूंगा अपनी तरफ से भी, गुड लक टू यू ऑल. ये फिल्म का नाम है. कितना प्यारा सा नाम है ना, मतलब किसी को कहते हो गुड लक टू यू ऑल, है दिल में जाना रहती ना यार. आप किसी काम करने जा रहे हो और भाई साहब ऐसी फिल्म आप देख के चले आओ, तो भाई साहब दिल के अंदर जो है ना आपके मजा आ जाता है ऐसी फिल्मों के बारे में सुनकर. तो तुम इस फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैनेडियन फिल्म है एक तरफ, फिलीपींस की फिल्म है एक तरफ, यूएस की फिल्म है, तो मतलब अलग अलग देशों से फिल्में भारत में आ रही हैं. मतलब ये कमाल की बात है कि जहां पर राजा हरिश्चंद्र से हमने फिल्मों की शुरुआत की थी, आज हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आ रही है. और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इसने सिद्ध कर दिया है कि सिर्फ हमारा देश एक ऐसी बहुत ही बढ़िया मुहिम शुरू कर चुका है जिसके अंदर कई सारी जो है फिल्में अलग अलग देशों से आती हैं. 90 के दशक से शुरू हुआ ये खूबसूरत सा फेस्टिवल आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि इसका 19वां जशन हम मना रहे हैं FM रेनबो 107.1 FM पर. तो दोस्तों बने रहिए, अगर आपने बिल्कुल अभी भी ट्यून किया है तो आप इस वक्त सुन रहे हैं लाइव कमेंट्री मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जो हो रहा है NFDC के कॉम्प्लेक्स में, यानी कि पेडर रोड पर. और नीता जो है पूरी जोश में तैयार है और आपको बताने के लिए फिल्मों के बारे में और कौन कौन सी वर्कशॉप के बारे में, और बल्कि मैं तो पूछना चाहूंगा नीता से इस बारे में और भी चीजें. बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आज तुम्हारे मन में क्या जो सबसे पहले बताना चाहती है फिल्मों के बारे में. मैं तो जितने भी इस वक्त अपने सामने लोगों को देख रहा हूं, जबान बंद हो जाए, इतने खूबसूरत लोग और इतनी बड़ी बड़ी हैसियत के हैं.
0: Ambience here is palpable, but what is important is what brings in the motivation is the awards and the amount associated with it. So if you've heard about the silver conch and the golden conch, and if you're not, then we are going to tell you all about it. And the international jury right here at the Ravindranathya Mandir, Prabha Devi, those who have judged this entire, you know, it's been a difficult job actually, because these films are so brilliantly made and the scripts are so exclusive and extraordinary, very different from the mainline stream cinema. Keith, what do you think? Documentaries do not have as much encouragement from the general public as much as the mainstream cinema. So festivals like this, like Mumbai International Film Festival, is one of a kind.
1: बिल्कुल नीता, मुझे लगता है इसके अंदर का मैं एक चीज जोड़ दूं, जो पिछले साल जो है NFDC ने एक बहुत ही बढ़िया मुहिम शुरू की थी और वो थी वेब बाजार के बारे में, वेव स्टॉक बाजार. मतलब कमाल की बात है, पहले हम सोचते थे कि डॉक्यूमेंट्रीज बन जाए यार, चल जाए, कोई देख ले, बड़ी बात है. लेकिन अब वो बाजार बन चुका है, जो प्रोड्यूसर्स जो वहाँ के राइटर्स हैं उनको एक फिल्म बाजार मिल चुका है जिसके अंदर अपनी फिल्में बेच सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. और जहाँ तक बात करूँ वर्कशॉप के बारे में, इसके अंदर कितनी अच्छी वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप्स के बारे में अवार्ड्स हैं. और सबसे बड़ी बात, तुम्हें याद है जब हम स्कूलों में जाते थे तो हम नंबर तो लाते ही लाते थे, लेकिन नंबर्स के साथ साथ हमारे मन में रहता था कि यार कोई अच्छा सा अवार्ड मिल जाए यार, कोई पुरस्कार मिल जाए तो भाई साहब हम जी जान लगा दें. So you tell me, like how is it going on in your life? अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ या तुमने किसी ऐसे जानने वाले इंसान को देखा हो जिसने बहुत मशक्कत से, क्योंकि आज की तारीख में जो मोबाइल है ना वो अपने आप में एक पूरी सिनेमा है. मतलब लोग मोबाइलों से फिल्में शूट कर करके डाल रहे हैं, आपको ये मैटर नहीं करता कि आपके पास एरीफ्लेक्स कैमरा है या फिर आपके पास में डिजिटल कैमरा है. एक अलग ही बूम आ गया मोबाइल की दुनिया से. तो मैं अगर बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में जहां पर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, और भारत से भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, और इन सारी फिल्मों के अंदर अलग अलग जो फिल्में हैं उनके अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, और इन सारी अलग अलग भाषाओं के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भाई साहब दिल को छू जाने वाले हैं.
0: एग्जैक्टली, द अवार्ड्स It at the Mumbai International Film Festival are what drives the competition, apart from the other motivation, of course, that is creativity. But let me tell you that the best documentary film of the festival in the international competition category will get a monetary gain of 10 lakhs, a golden conch and a certificate. The best short fiction film will get a monetary gain of 5 lakhs, silver conch and a certificate.
1: और जहां तक बात
0: करूं, बेस्ट एनिमेशन फिल्म विल गेट अगेन अ मॉनिटरी गेन ऑफ 5 lakhs, अ सिल्वर कॉन्च एंड अ सर्टिफिकेट, एंड द स्पेशल जूरी अवार्ड
1: बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए जब जब इनामों के बारे में आप सुनते हैं ना, तो भाई साहब दिल में जो है ना भाई ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं। इतने सारे जो इनाम है ना, वो इनाम जो है एक के बाद में एक के बाद में एक। लेकिन अगर आप देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्रीज को जो है अलग इनाम है, आप देखो AI फीचर फिल्म को एक अलग है, जिस तरह के कार्टून फिल्म है, एनिमेशन फिल्म है, उन्हें अलग इनाम है। तो मेरे ख्याल से एक आम इंसान को यह समझाना कि कौन सी फिल्म का अवार्ड किसको मिलेगा, ये बड़ी बात है। नहीं तो आप सोचोगे सारे अवार्ड आप ही को मिल जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो मैं क्या कहना चाहूंगी, मतलब जहां पर 10 लाख का इनाम है, 1 लाख का इनाम है, मुझे तो लगता है इनाम के साथ साथ सबसे बड़ी पहचान है कि वो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपनी फिल्में दिखा रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े मंच पर जब आपकी फिल्मों को दिखाया जाता है तो आपके साथ एक हिम्मत जुड़ जाती है, एक नाम जुड़ जाता है, और फिर आपको मुकम्मल जो फिल्म बनानी होती है उसके लिए शायद फंडिंग भी इजी हो जाए।
0: इजी ऑन द फंडिंग पॉइंट, यस, दे हैव अ 3 डेज डॉक्यूमेंटरी बाजार एज वेल टू एनकरेज फंडिंग फॉर दीज डॉक्यूमेंट्रीज। देयर आर पैनल डिस्कशंस, देयर आर मास्टर क्लासेस बीइंग हेल्ड एट NFDC व्हिच हैव अ 90-मिनट सेशन ईच, एंड दिस ईयर दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वर्कशॉप सीरीज ऑन ऑल द वर्टिकल्स ऑफ सिनेमा, दैट इज AI एंड एडिटिंग, एंड These workshops are going to be held from the 16th of June to the 20th of June at 5 PM. If you want to know more, yes, you should go on the site and definitely register for them.
1: जी दोस्तों बिल्कुल, देखिए फिल्मों के अवार्ड आपने सुन लिए, फिल्मों के रिवॉर्ड आपने सुन लिए, लेकिन साथ साथ में मैं बात करूंगा वर्कशॉप की। देखिए कहते हैं कि सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त में जो बहुत ही बेहतरीन सी जो मैं कहूंगा वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो नाम एक मौधुरा पलित करके हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाई है, अमर कॉलोनी, किशमिश, खच्चर मानोश, दिल खुश, बहुत ही एक से बढ़कर एक जो हैं फिल्में रही हैं। जहां तक बात करूं मैं इन फिल्मों के बारे में, ये फिल्में जो हैं बेशक बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई, लेकिन जब जब रिलीज वो होंगी तो मुझे लगता है बहुत ही मुकम्मल नाम होगा उनका। और जहां तक बात करूं वर्कशॉप के बारे में, नीता हमें कुछ बता रही थी, या हाँ नीता तुम कुछ कह रही थी वर्कशॉप के बारे में?
0: Well, Keith, before the workshop, let me just tell you that over the last 36 years, the Mumbai International Film Festival has grown under the Ministry of Information and Broadcasting into the oldest and the largest film festival, dedicated entirely to non-feature cinema in all of South Asia. Think about the legacy, Keith, here. Since 1990, this very festival has been the ultimate global launching pad for documentaries, short fiction, and animation. It's where world-class juries have handed down the prestigious Golden Conch and Silver Conch Awards to films that changed how we view reality.
1: बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू। और मैं ये कहूंगा कि देखिए जहां तक हम बात करें फिल्मों के, जिस भी तरह के वो आती हैं, मैं बात करूं चाहे वो AI की फिल्मों, चाहे वो AI फिल्मों के साथ साथ दूसरी तरह की फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज हो, लेकिन इन सबके साथ में एक बड़ी ही खूबसूरत सी बात है, और वो खूबसूरत सी बात ये है कि आप इन फिल्मों को हर साल किस तरीके से अपना बना सकते हैं। जैसे तुमने बात कही वेब बाजार के बारे में, वहां पर प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और वहां पर वो हाउसेस भी हैं जो आपकी फिल्मों को खरीदना जानते हैं, जो आपकी कला को पहचानना जानते हैं। और अगर इन सबके साथ में बात करूं, इस देश में ये मुहिम जिन लोगों ने शुरू करी और जिनसे ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं कहूंगा हमारे देश में सूचना और प्रसारण विभाग, अश्विनी वैष्णव जी का नाम लेना चाहूंगा, रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी मुहिम है। क्योंकि कोई भी जश्न अगर आप बहुत लंबा मनाना चाहते हो और वो जश्न जो दुनिया के हर इंसान के अंदर एक नई फूंक भर दे, तो ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां पर इस वक्त ताता लगा हुआ है, लोग जो है एक के पीछे एक खड़े हुए हैं, और फिल्मों का ये झुंड है वो इतना बड़ा है कि भाई साहब अगर आप कानों के जरिए देख सकते हैं तो आप कहोगे कि क्या ये जिंदगी असल में होती है। क्योंकि ऐसा होता है घर के अंदर जब बैठे होते हैं ना, तो आपकी कान ही आपकी आंखें होती हैं। क्योंकि इसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अपनी अपनी फिल्में जो हैं सबमिट करी है, और बताना चाहूंगा 46 देशों से फिल्में आई हैं इसके अंदर, 300 से ज्यादा फिल्में इसके अंदर हैं। तो आप सोचिए इतनी बड़ी जब चीजें होती हैं, लिस्ट होती हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करोगे, आप सोचिए। बहुत ही मुश्किल चीज है ये, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये मुश्किलें हमारे साथ ना होती तो क्या हम 1990 से आज 2026 तक पहुंच पाते? आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, आकाशवाणी पर, मेरे साथ बनी हुई नीता और 19th मुंबई फिल्म फेस्टिवल।
0: The 19th Mumbai International Film Festival is soon going to begin, but right now we have a song for you. Stay tuned in and stay in tune to 107.1 FM Rainbow.

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिलहाल आप सुन रहे हैं बैक टू बैक। आज से नहीं, मैं कहूंगा कि हमेशा के लिए ये फेस्टिवल है, क्योंकि फेस्टिवल भाई साहब बहुत ही शानदार है। ये हमेशा के लिए अमर हो जाने वालों में से है, क्योंकि 1990 से अगर कोई चीज शुरू हो रही है और वो अभी भी आप तक बनी हुई है, तो नहीं तो तुम क्या कहती हो इस बारे में, बात है कि नहीं है?
1: Exactly, the Mumbai International 19 Film Festival. The red carpet is already live, and standing here makes you realize, Keith, just how deep the roots of this festival go. Mm-hmm. For the young creators walking the carpet tonight, mm-hmm. they are literally stepping into history. Mumbai International Film Festival began its journey way back in 1990, as we said, initially known as the Bombay International Film Festival. And that brings us right to today, June 15, 2026. From that first festival in 1990 to this 19th edition, the scale has exploded. Over the next 7 days, this complex is going to screen over 100 powerhouse films. But what's really got everyone talking on the red carpet tonight is how Mumbai International Film Festival continues to evolve. Alongside the traditional hard-hitting documentaries, there is a massive buzz around the new AI and immersive cinema categories. Filmmakers are literally redefining the future of digital storytelling right before our eyes, blending 36 years of heritage with tomorrow's technology.
0: नीता, जैसे तुमने कहा कि बॉम्बे से मुंबई तक का सफर रहा है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तुम जानती हो कि बॉम्बे मुंबई कब बना? अगर मैं बस जनरली एक सवाल है, बिकॉज यू आर फ्रॉम बॉम्बे ओनली, तो कभी कभार मन में सवाल आता हो, तो मैंने सोचा पूछूं तुमसे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को बताना चाहूंगा दोस्तों को कि कभी कभार, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, लेकिन फिर भी अब मैं काफ़ी लंबे अरसे से मुंबई में हूं, तो मैंने सोचा जाना जाए कि बॉम्बे मुंबई कब बना, और ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसकी शुरुआत जो है जैसे 1990 में हुई, लेकिन 1995 के अंदर जब नवंबर का दिसंबर का महीना चढ़ा, तब जो है बॉम्बे धीरे धीरे धीरे मुंबई के रंग में रंगने लगा। मैं इतने कहना चाहूंगा कि बेशक वक्त बदल गया, दशक बदल गए, लेकिन आज भी कोई चीज जो स्टैंड कर रही है और वक्त के साथ अपने आप को अपडेट कर रही है, नहीं था मैं कहूंगा कितनी सारी चीजें जुड़ गई हैं, चाहे मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्रीज की, मैं बात करूं AI की, मैं बात करूं एनिमेशन फिल्म की। किसी ने सोचा था कि जो बचपन में हम लोग कार्टून देखते थे, उन कार्टून की एक ऐसी खूबसूरत फिल्में बनेंगी जिन्हें इतना सराहा जाएगा, एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनेगा। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब किसी फिल्म को मिलता है तो उसकी एक अलग पहचान मिलती है, उस ऑडियंस से कितने जो लोग हैं वो अपना जीवन का जीने का मकसद जो है शुरू करते हैं।
1: Exactly. Mainstream cinema, Keith, usually gets a lot of, as we said, push from the general public and from producers as well, because there are a lot of commercial benefits to it. But documentaries, short films and animation, they don't have a lot of encouragement from the general public also. We can say it is a niche market. And especially for the creators of these documentaries, short films and animation films, it becomes very difficult. A lot of these creators, they put in their hard-earned savings of life to create something that they believe in. And a festival like the Mumbai International Film Festival, it brings to life the hopes and dreams of all these creators.
0: बिल्कुल तुमने सही कहा, और जब होप्स की बात आती है तो जुबान से मिठास झलकती है इंसानों के, और वो मीठी बोलियों का मेरे ख्याल से गाना इस वक्त बनता है FM रेनबो 107.1 FM पर। दोस्तों बने रहिए मेरे और नीता आरजे के साथ में, आप सुन रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लाइव अपडेट्स, बने रहिए आकाशवाणी के इस खूबसूरत से चैनल पर।
1: स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन ट्यून।

0: वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल आप सुन रहे हैं बड़े ही खूबसूरत से कार्यक्रम को 107.1 एफएम पर।
1: वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेट इज ऑफिशियली ओवर, द रेड कार्पेट इज रोल्ड आउट, द फ्लैश बल्ब्स आर ब्लेजिंग एंड द प्रोजेक्टर्स आर वार्म्ड अप बिकॉज इट इज ओपनिंग नाइट फॉर द 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिफ

0: 2026. And right now on the red carpet we have Kiran V. Shantaram, son of the legendary Shantaram. Well, the V. Shantaram Lifetime Awards related to the Mumbai International Film Festival, it's presented at every edition of MIFF for documentary shorts and animation films. This honor is bestowed upon filmmakers for their seminal contributions to the Indian documentary movement. With a trophy, citation and a monetary award of 10 lakh rupees. Eminent filmmakers who have received this lifetime honor include Shyam Benegal, Vijaya Mule and wildlife filmmakers Subia Nallamuthu. While V. Shantaram, the awards commemorate Shantaram Rajaram Vankudre, a visionary Indian filmmaker, actor and producer widely celebrated as a foundational figure in Indian cinema. We don't need an introduction of V. Shantaram. The Lifetime Award is dedicated to him. V. Shantaram himself, he made films that were very realistic actually, Keith. At that, back in that point of time, we did not have to distinguish as much between documentaries and commercial films, because the kind of realistic films that were being made, he himself directed 55 movies and acted in 25 of them. And that is the legendary V. Shantaram, who paved the way for the Mumbai films today that we are watching.
1: नीता, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं इसके साथ में एक चीज बड़ी खूबसूरत सी मैं जोड़ना चाहूंगा। कहते हैं कि सितारों का ताता वहां लगता है जहां पर सितारों के लिए रेड कारपेट होता है, और उन सितारों को ढूंढने वाला एक जौहरी होता है। और मुझे लगता है कि जो वी शांताराम जी थे, उन्होंने जो है ये मुहिम जो है फिल्मों की दुनिया में जो एक अलग ही मोड़ दिखाया, उससे मैं कहता हूं ऐसे सितारों को चुनने की शुरुआत हुई जिसका कभी ना अंत होगा। तकरीबन 125 सालों से चल रहा, मैं कह सकता हूं कि अब ये ऐसा अवार्ड एक शायद बन जाए जिसकी कोई परिकल्पना भी ना कर सके। जी हां दोस्तों, 125 इयर्स ऑफ वी शांताराम जी, द पायनियरिंग स्पिरिट। बाकी इसके साथ में अब आप देखेंगे बैक टू बैक जो है रेड कारपेट पे ताता लगना शुरू हो गया है, एक से बढ़कर एक बड़े सितारे का। जहां तक बात करूं मैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टार्स ही नहीं, स्टार मेकर भी आते हैं। और जहां तक बात करूं नीता की, नीता तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी, जहां तक लोग आए और जहां तक बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी जो है हमारे समक्ष इस वक्त मुझे नजर आ रही, नीता इसके बारे में तुम क्या कहोगी?
0: वेल, वंदना कोहली राइट नाउ ऑन द रेड कार्पेट, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। बट केथ, लेट मी जस्ट टेल यू दैट द क्रिएटर्स हु आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस रेड कार्पेट, डू यू नो हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर दिस ईयर? इट इज 1459 एंट्रीज एट दिस ईयर द 19th Mumbai International Film Festival edition, and in a various myriad, 55 languages coming from 47 different countries. That's the kind of exposure that we are gaining tonight for the citizens of Mumbai, right here in the capital, the monetary capital, the financial capital, but I would say the cultural capital as well, the film capital as well.
1: क्या बात है, तुमने मतलब कोई शब्द छोड़े ही नहीं, और मुझे लगता है जो शब्द तुमने छोड़े भी हैं वो शायद इस जगह के लिए काफी ना, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं उस वक्त स्टार की जो है आनी जो है रेड कारपेट पे कदमों की चहलकदमी शुरू हुई है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये फेस्टिवल दोस्तों बताना चाहूंगा कि 15 जून यानी कि आज से शुरू हुआ है और ये 21 जून तक चलेगा। और आप भी अगर इसका हिस्सा अब एज ए स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो कई सारी वहां वर्कशॉप थी, अगर आप लोगों ने उस पर अपने आपको लॉग इन कर दिया है, आपने अपना जो है वो पास जनरेट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी नहीं किया है तो आप जो है उसे बुक माई शो पर जाके कर सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो है अपना योगदान एज ए व्यूअर दे सकते हैं। और अगर आप फिल्मों को देखने के बहुत ही शौकीन हैं तो मेरे ख्याल से सीखने का जो है इसके अंदर आपके पास में बहुत कुछ है। जहां तक बात करूं वर्कशॉप की, AI की बात करूं, डॉक्यूमेंट्रीज की, एक से बढ़कर एक जो है फिल्में जो है इसमें अलग अलग तरह की देखने को आपको मिलेंगी। और जहां तक बात करूं तुम्हारी इस वक्त AI की, मैंने सुना है बहुत एक पॉपुलर क्लिप हुई थी जहां तक मुझे भी याद है, ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की, आई डोंट नो अगर तुमने कभी देखी हो। देखो दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि AI का जो दौर है वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि अब क्या होगा, कई जगहों पर जो है AI को सुन के भाई साहब कान खड़े हो जाते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब AI को जो है लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि शायद अब जो है फिल्में इस तरीके की आ रही हैं कि AI जो है आपका जो है दोस्त बनकर रहेगा। फिलहाल अगला ट्रैक आपको
0: एग्जैक्टली कहते, एग्जैक्टली दिस ईयर at the Mumbai International Film Festival, it features a brand new AI cinema hackathon titled Mumbai Through a Thousand Eyes, a 40

0: 8-hour global challenge exploring how AI can drive storytelling. So that is a first for even at the Mumbai International Film Festival. And if we talk about tributes, a major highlight is the centenary tribute to legendary filmmaker and natural historian David Attenborough, featuring and screening of two of his films are going to take place this year, and they're going to be featured and screened at the NFDC at Pedder Road. That is all you have this year, and a lot more packed actually at the 19th International Mumbai Film Festival. The red carpet is already rolled out. We're having more and more guests coming in, and we're going to soon bring to you live from what is happening inside the auditorium at the Ravindranatya Mandir. But right now it's time for a song, as it is a very auspicious beginning.
1: बिल्कुल दोस्तों, इस शाम के साथ बने रहिए, साथ में रहेंगे खूबसूरत से गाने। लेकिन जैसे अभी आपने जाना एआई के दौर तक, लेकिन अब इंडिया का एक ऐसा एआई आने जा रहा है जो शायद आपको पहली बार पता चलेगा कि मिफ आपके लिए क्या एक ऐसा एआई भी तैयार कर सकता है। फिलहाल वो क्या है बहुत जल्दी बताऊंगा आपको। एफएम रेनबो पर मेरे साथ बने रहिए, और हमारे साथ में नीता, और आज आप सुन रहे हैं मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की वो रेड कार्पेट की गाथा जो शायद 21 तारीख तक चलेगी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त आप सुन रहे हैं कि लाइव बिल्कुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में वो चीजें जो शायद आप सब जानना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है लाइव हैं, उनका नाम जो है मेरे ख्याल से बताना भी जरूरी है क्योंकि एआई की एक पहचान है और वो पहचान के अंदर अगर कोई मुकम्मल नाम है तो मुझे लगता है वो नीता ही बताएंगी कि कौन है।
1: राइट नाउ एट द रेड कार्पेट वी हैव द एनिमेटर ध्वनि देसाई हु हैज बीन क्यूरेटिंग एनिमेशन फॉर द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिंस 14 ईयर्स। She says that the Mumbai International Film Festival has played a very important role in her life, encouraging her to make this platform visible, especially for animators. She's been winning awards, she's been on the jury panel, and now she's also she also travels abroad to be a part of the international jury panels for other awards and other festivals as well. And right before Dhwani Desai, we had Prasoon Joshi, the famous lyricist, celebrated Indian poet at Guru and Lyricist on the red carpet.
0: और उनके बारे में भी नीता जी बताएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गीतकार और एक लेखक के बारे में अगर कोई बेहतरीन तरीके से बता सकता है तो एक लेखक ही बता सकता है। तो जैसे बीइंग अ राइटर यू आर मतलब अपने आप में क्या कहना चाहेंगी कि आप इतना खूबसूरत जब आपको कभी ऐसा मुकाम मिले तो
1: Well, it is definitely an honor to be at the red carpet in whatever way possible, whether it's as an anchor, as a creator, as a documentary creator, or if you are even on the panel of Mumbai International Film Festival curating these and, listing these movies, going through or best is being, on the jury panel, and you get to see so many movies. And I tell you about all the entries right now, Keith. It is amazing because we have an overwhelming 1,459 film entries were received this year from 47 countries in 55 different languages. In the competition section, we had 144 films, 52 international and 92 national. And in the non-competition section, we have 202 films, 106 international, 96 national across 24 curated segments, including Mosaic, Best of

0: Busan Next Wave, Echoes from Northeast, and the newly introduced Marathi film section. And the most exciting thing, Keith, here is the prize money, which is why it is exciting, is not just because it is a monetary gain, but it is important because it brings in the encouragement, the much needed hope for these small time creators and curators. A prize money of a total of 45 lakhs across 18 competitive awards. As I mentioned earlier, that there is the Golden Conch Award and certificate of 10 lakhs monetary gain for the best documentary film of the festival. The best short fiction and the best animation films get a 5 lakh award, monetary gain, silver conch and a certificate. And there's a special jury award. It's called the Pramod Pathy Award for most innovative experimental film that gets a monetary gain of 1 lakh rupees plus a trophy and a certificate. The National Competition Awards, Keith, please do the honors.
1: देखिए पहले मैं आपका अवार्ड्स के बारे में बताऊं, पहले मैं इससे पहले जितने भी रेड कारपेट पे लोग आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, प्रसून जोशी साहब के बारे में। देखिए जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने पटकथाएं लिखी हैं, लेखक बने हैं, गीतकार रहे हैं और विज्ञापन क्षेत्र में वो विशेषज्ञ रहे हैं, इस तरह के जब लोग रेड कारपेट पे आते हैं तो लोगों को एक हिम्मत भी मिलती है कि आप एक तरफ मोबाइल से कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, आप तभी उस मुकाम पर हैं और एक इंसान जो इस मुकाम पर है जो बहुत बड़ा नाम बना चुका है वो भी उसी रेड कारपेट पे है। तो कभी भी जो लिखने की अपनी कश्मकश है उसे दिल के अंदर मत रखिए। अगर आपने भी कोई फिल्म ऐसी बनाई है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता नहीं था, हम कई बार चीज़ें शूट कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिल जो है वो हमें इस बात का जो है गवारा नहीं करता कि हम इतने बड़े फेस्टिवल्स में अप्रोच करें। और जब यहाँ पर तुमने बताया कि इतनी सारी फिल्में आई हैं तो मोबाइल से शूट की हुई फिल्में जो है ना वो का हिस्सा बन सकती हैं। जहां तक बात करें एआई के बारे में, तुमने बात करी अभी ध्वनि देसाई जी के बारे में, एआई का जो सेक्टर वो इतना बड़ा हो चुका है कि आज की तारीख में चाइना तक ने जब उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया ने इस बारे में उंगली उठाई कि भाई साहब जब ये ऐसा कर सकते तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगर आप देखो तो आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, सिर्फ मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इन सबसे हटकर अभी जो रामायण आने जा रही है या फिर एआई की दुनिया का एक सबसे बड़ा जो है 2027 में एक फिल्म आने जा रही है उसके बारे में अभी नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई चीज़ें दिल के अंदर भी रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है दिल की चीज़ें जानने भी ज़रूरी हैं। जहाँ तक बात करूँ अवार्ड्स के बारे में दोस्तों, अवार्ड्स सच में बहुत बड़े बड़े हैं और उन अवार्ड्स को पाने के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। जहाँ तक बात करूँ अवार्ड्स के बारे में, मुझे लगता है वो रिवॉर्ड लेने वाले इंसान ही बताया तो बेहतर है और उनका नाम है नीता।
0: Keith, you're absolutely right. Actually, as you said, you know, there are so many platforms right now for movies. There is definitely the old school cinema screen that we've been raised with and we've had the good fortune to enjoy, the silver screen. But now there are television, there are OTT platforms and so much more to consume for every individual that the lines have started blurring. You know, these platforms have created so much exposure that there is no longer a restriction as to what you can consume or what one can create. That is very important when it comes to, especially to movies, because the lines are now blurring away and we have a lot of not just time, man, you know, we have not just time to put into this consumption, but also a lot of the platform itself gives a lot of hope, a lot of exposure to the creators themselves. And it depends completely upon you on which side of the screen you want to be.
1: बिल्कुल, जैसे तुमने कहा, मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि जब पेंडेमिक आया था 2020 में तब एक नई चीज इजाद हुई थी जिसका नाम था OTT, लेकिन OTT के साथ साथ अब एक आ गया वर्टिकल ड्रामा। वो वर्टिकल ड्रामा जिसने अब एक नया ही जो है तूफान उठा दिया है और एक ऐसी चीज आ गई है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि क्या इतने सारे वर्टिकल ड्रामास अगर आप देखो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अपना एक अलग ही जो है जगह बना रहे हैं और टीवी की जो जगह है वो शायद कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब धीरे धीरे देखो OTT ने अपनी जगह बना ली है, मैं कहूंगा सोशल मीडिया अपनी जगह बना ली है और अब माइक्रो ड्रामा की अपनी जगह आ रही है। इन्हीं बारों में और बात करेंगे, लेकिन वक्त है सवारने का और वक्त अगर कोई सवार सकता है खूबसूरत गाने के साथ में FM रेनबो 107.1 FM पर, तो वो होने वाली है मोनाली ठाकुर की आवाज सवार लूं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने, और इन सुपरहिट गानों के साथ साथ आप सुन रहे हैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की लाइव अपडेट्स। मेरे साथ हैं आरजे नीता और मैं आपका होस्ट और दोस्त आरजे के थांडा। आपने देखा अभी रेड कार्पेट पर आशीष शेलर जी, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर हैं हमारे महाराष्ट्र की, और मैं कहूंगा कि इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, और उन बातों के साथ में मैं चाहता हूं नीता, अगर तुमने देखा उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आज की तारीख में जो फिल्में हैं वो सिर्फ 90 मिनट्स की, 2 घंटे की, 1 घंटे की नहीं है। अब जो है फिल्मों का दायरा और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो है क्षमता भी जो है वक्त के साथ जो है बदल रही है, और वो सिनेमा जो है किसी भी रेंज का हो सकता है। वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो 2 घंटे का हो, वो 90 मिनट का हो या फिर 60 मिनट का हो, वो छोटा भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो आज की तारीख में जो शॉर्ट फिल्म से होती हैं, चाहे वो 10 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की हो, अब तो 2-2 मिनट का ड्रामा आने लगा है, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात करी थी, वर्टिकल ड्रामा। वो वर्टिकल ड्रामा जिसने हर तरफ एक जो है अपना मुकाम बना के रखा हुआ है, और भाई साहब चाहे आप कितने भी चैनल्स कर लो, उन चैनल्स पर भाई साहब आज की तारीख में हर तरफ वर्टिकल जो है फिल्में आ रही हैं, 2-2 मिनट के ऐसे ड्रामा आ रहे हैं, जो 2-2 मिनट के ड्रामा आपको वो मजा देते हैं जो शायद आपको बड़े बड़े सिनेमा घरों में शायद ना मिलता हो।
1: या बट दीज वर्टिकल ड्रामास कैन नॉट बीट द ऑथेंटिसिटी एंड the originality that these documentaries, these short films, these animation films bring to the Mumbai International Film Festival.
0: जैसे ओटीटी जब आया था तो कहा जा रहा था कि ओटीटी अपनी जगह नहीं बना पाएगा, टीवी की अपनी एक अलग दुनिया है।

0: लेकिन अगर हम देखा जाए तो आज ओटीटी ने अपनी जगह बना ली है और डॉक्यूमेंट्रीज आज की तारीख में ओटीटी पर जो है हर तरफ आ रही हैं। ओटीटी जिस तरह आया है, इसी तरह से मैं बात करूं एक सेगमेंट, इस बार मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने भी जो है अपना टॉपिक रखा है और वो है माइक्रो वर्टिकल ड्रामा, जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी जो है डिबेट होने वाली है जो MIFF में होने वाली। और तुम जो इसमें कुछ जोड़ना चाह रही थी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या था तुम्हारे मन में इस बारे में।
1: एडवोकेट यार आशीष छेलारजी who's formally served as Maharashtra's cultural affairs minister and he currently holds position including Mumbai suburban district guardian minister, well he beautifully said that documentaries are not just movies, they are expression that give the correct message and they increase the scope of the imagination of the viewer. They give you the facts, they give you the realistic cinema that is very different from the commercial cinema, which is more fiction. So documentaries are non-fiction and they are, so that is why the Mumbai International Film Festival is so popular among creators and curators, because it brings a breath of fresh air compared to what the cultural the commercial cinema brings every day to the theaters and to the general public, which I think brings about a change in society, but at very small levels, not really at the grassroots level. But documentaries and short films are what actually bring the renaissance, we can say, of culture and heritage around, and they've been doing so since decades and centuries, and that's why they are as important. Right now on the red carpet we have
0: आशुतोष गवारीकर जी। देखिए उनके नाम के आगे लगान जरूर लिखा हुआ है, पर ये लगान वो है जिसे हम सब ने देखकर खुशियों से चुकाया है। क्या कहती हो तुम नीता, अगर हम बात करें जहां तक शुरुआत की बात करें, आपको याद है कि इनकी बहुत ही पुरानी फिल्म थी जिसके अंदर काफी सारे कलाकार थे और धीरे धीरे जब है जर्नी शुरू हुई तो उस वक्त एक्टर थे, किस तरह से डायरेक्टर बने, तो जब फिल्मों की जिंदगी शुरू होती है तो उसके बारे में मेरे ख्याल से कहना बड़ा ही अलग और संजीदा भी हो सकता है कि आप कब से शुरू करेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए कहां उन्होंने जिस रोल शुरुआत की थी, आज एक डायरेक्टर बनकर जो है रेड कारपेट पे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे समक्ष खड़े हैं। हम जहां तक दोस्तों बात करें, अभी कुछ दिनों पहले ही लगान की 25th जो है एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। और जहां तक हम बात करें फिल्मोग्राफी की बात, तो देखिए उनका भी कहना यही है कि फिल्म बनाने का जो है साधन जो है वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्क्रिप्ट, कि किस तरीके से आप स्क्रिप्ट को बांधते हो। आप सब जानते होंगे कि स्वदेश जो है फिल्म, उस फिल्म के लिए भी उन्होंने आमिर खान साहब को अप्रोच किया था, लेकिन आमिर खान साहब जो है उस फिल्म को पसंद नहीं कर पाए उस वक्त पे जब स्वदेश आ रही थी, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। बाद में शाहरुख खान साहब ने इस फिल्म को किया, इसका नाम है स्वदेश, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। तो तुम इस बारे में कुछ कहना चाह रही थी, रेड कार्पेट से जुड़ी हुई कुछ चीजें।
1: वेल आई एम ऑल एक्साइटेड अबाउट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट्स अ 6:01 ऑन द रेनबो क्लॉक एंड एट 6:05 वी आर गोइंग टू हैव द न्यूज हेडलाइंस इन मराठी एंड वी आर गोइंग टू बी बैक bringing you the live updates of the Mumbai International Film Festival, the 19th edition 2026 held biannually by the
0: 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दोस्तों मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल NFDFC के इस खूबसूरत से रेड कारपेट पर। एक से बढ़कर एक चीजें होने वाली हैं, लेकिन अब चल रही हैं मनमर्जियां जो होने वाली शिल्पा राव की आवाज में। और 6:05 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार। बताना चाहूंगा इस वक्त रेड कारपेट एक बहुत ही ओटीटी की बड़ी हस्ती आ चुकी है।
1: यस
0: जी हाँ बिल्कुल, अहलावत साहब हाथी, आप नाम से समझ गए होंगे मैं किनके नाम कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से पाताल लोक का जब नाम आता है तो वो हस्ती का नाम मेरे ख्याल से बोलना नहीं चाहिए, क्यों नहीं था
1: Yeah, but right now we're going to bring you the music and we're going to be back soon because Jaideep Ahlawat has a lot to say on the red carpet and we're going to bring you what he said. But give us some time for the news, 107.1 FM Rainbow.

0: की जो है नाम भी होती है, एक पहचान भी होती है, लेकिन उन फिल्मों के पीछे जो लोग काम करते हैं उन्हें एक पहचान दिलवाने में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ने जो एक बहुत ही खूबसूरत सी मुहिम शुरू की हुई है, जिसका आगाज 1990 में हुआ था, वो आज भी जारी है। और जहां तक बात करूं मैं संगीतकारों की, यहां पर सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं हो रही, संगीतकार की भी अगर हम बात करें, नंदेश जी जब आए उन्होंने कहा कि किस तरह से संगीत की दुनिया जो है मिफ के अंदर छाई हुई है। और जहां तक बात करें आर्य जीतूराज के बारे में, देखिए रेडियो पे आपने सुना होगा और आपने ये भी देखा होगा कि कभी उनका चेहरा कहीं पर नहीं आया, लेकिन आज रेड कारपेट के ऊपर आपने देखा होगा उनका चेहरा सिर्फ कानों के जरिए, क्योंकि अब बहुत जरिए अब खुलने वाले हैं जिसमें आप उनका चेहरा शायद देख पाएं। नीता क्या
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट केत एज जीतूराज वाज सेइंग दैट रेडियो एज अ मीडियम एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड एज अ मीडियम हैव दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस, बट जीतूराज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट दीज आर जॉनराज दैट विल नेवर दीज आर प्लेटफॉर्म्स दैट विल नेवर लूज देयर ब्यूटी बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, दैट्स व्हाट द ओरिजिन इज, दैट्स व्हाट वेयर योर रूट्स लाई, एंड दैट्स व्हाई द ब्यूटी of radio and the beauty of documentaries, short films which started long ago is still relevant.
0: बिल्कुल सही कहा तुमने नीता। और मैं जहां तक बात करूं कि अभी सिर्फ वहां पर जो है एआई की फिल्में नहीं है, शॉर्ट फिल्म्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है रेडियो। मैं बात करूं चाहे बिनाका गीतमाला की बात करूं, सदाबहार की बात करूं, ये जमाना वो है कि रेडियो जो है हर फिल्म फेस्टिवल की शान रहा है। तो दोस्तों रेडियो की शान आपके साथ में बरकरार है, 107.1 FM पर आप सुन रहे हैं आरजे नीता को, और मैं बने हुए हैं जिसका नाम है के थांडा, और आपके समक्ष MIFF यानी कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट की दास्ता सामने आ रही है। लेकिन आप कहीं उड़के मत जाना क्योंकि गाना उड़ते हुए आ रहा मोहित चौहान की आवाज में है।

0: वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल हमारे साथ है खूबसूरत बातों का जरिया मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर और आरजे नीता। आप इस जर्नी के बारे में क्या कहेंगे जो आपके आंखों के समक्ष चल रही है?
1: वेल, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई कांट टेल यू, यू नो द एम्बियंस हियर इज सो पैल्पेबल। वी हैव इंफॉर्मेशन दैट द ओपनिंग सेरेमनी इज गोइंग टू स्टार्ट सून, बट द रेड कार्पेट इज इटसेल्फ वाज सो स्टार स्टडेड। वी हैड विद अस द फिल्म मेकर राजेश शर्मा, हु हैज हुज मूवी इज गोइंग टू बी स्क्रीनड एट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एंड यू नो व्हाट Rajesh, the movie that he's made is about a father's struggles, and you know, everybody sees the mother's struggle, but the father's sacrifices are not very openly accepted or acknowledged or appreciated, and that's what he wants to put across via his movie. And the opening ceremony has already started. Also, Harshada Ved Pathak, a prominent journalist, was on the red carpet, and that's what she said, that in the Mumbai International Film Festival, she's been here since 1992. The festival itself started in 1990, but she's been, you know, parallelly viewing so many films, and that's what the beauty of the festival is, that there is something in it for everyone, whether you're an environmentalist or whether you are of any age group or from any walk of life, there is something in it for each and everyone. Right now we are seeing the visuals inside the Ravindra Natya Mandir auditorium. The hosts are already here, they're welcoming the audience, and it is such a beautiful scene right in front of our eyes.
0: बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से अभी नीता ने आपसे कहा, तो राजेश जी की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जो फिल्म मेकर हैं, जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, और वो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को झप्पी कभी कभी दे दिया करो। यू नो, हम कभी भी अपने फादर को झप्पी देने में थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, गले लगा लेना और बोल देना पापा आई लव यू। बहुत ही खूबसूरत सी बात है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आम जिंदगी में थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बेसिक लगे, लेकिन भाई साहब ये किसी का दिन बना देती है, किसी की जिंदगी बना देती है। जहां तक बात करूं मैं हर्षिता की, जिन्होंने कहा बहुत ही पॉपुलर वो जर्नलिस्ट रही हैं और वो 1992 से जो है मुंबई इंटरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को जो है वो सराह रही हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से शायद मैं भी तभी पैदा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू अबाउट इट, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरे ख्याल से अब हम सेरेमनी के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, जो शुरू हो चुकी है इस वक्त रविंद्र नाट्य मंदिर के अंदर।
1: राइट नाउ वी आर ऑल स्टैंडिंग बाय फॉर द नेशनल एंथम।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने और साथ साथ में आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट की वो दास्तान जो शायद 15 से 21 जून के दरमियान चलती है। और अगर हम बात करें नीता स्टेज पर, तो आज जो है बहुत ही खूबसूरत जो है पर्सनैलिटीज जो है बुलाई जा चुकी है, चाहे मैं बात करूं अश्विनी वैष्णव जी की, या फिर डॉक्टर एल मुर्गन की, या फिर चंचल कुमार जी की, या फिर डॉक्टर अजय नागभूषण जी की, या फिर प्रकाश जी की, या फिर प्रसून जोशी जी की। मैं कहूंगा एक से बढ़कर जो एक हैं सितारों के साथ साथ, फिल्म जगत के साथ साथ, पॉलिटिशियन जगत से, फिल्म जगत से एक से बढ़कर एक जो है हस्ती आज रेड कार्पेट में आई हुई है।
1: Yes, standing here makes you realize just how deep the roots of this festival go. Now, if you are wondering where we exactly are, where we are standing, we are right in the heart of the Indian film heritage. It is the 19th edition of the Mumbai International Film Festival 2026. And let me tell you about the view inside this main hall of the Ravindra Natya Mandir right now. It is absolutely stunning, packed to the rafters. There's not a single empty seat in sight. It is a literal sea of humanity. If you look up at the balcony, it's overflowing. Down in the stalls, it's a beautiful mix of global film fraternity. We have legendary international directors rubbing shoulders with eager young film students. Everyone is packed in tight, and you can practically feel the collective goosebumps and anticipation vibrating through the room. There's that classic festival buzz, the people leaning across seats, pointing at the grand jury box and checking their schedules, the heavy velvet curtains on the grand stage that are now on the sides, neatly tucked in. The house lights are dipping into a deep golden yellow, and a sudden beautiful hush that has just fallen over this massive crowd. Every single eye in this packed auditorium is now glued to that giant podium, the platform, the stage, and waiting for the magic to begin. Well, we have an esteemed group of dignitaries, the frontliners in this Mumbai International Film Festival, whose contribution to culture and cinema is commendable. We have the legendary Kiran V. Shantaram. We have Shri Ashutosh Govarikar, Shri Jaideep Alahavat, Shri Prasoon Joshi, and Shri Ashish Chalarji. We also have with us Honorable Dr. L. Murugan. And we have with us Shri Chandan Kumar and Shri Sanskar Desai. Right?
0: You are absolutely right. और मेरे ख्याल से जितनी बड़ी और खूबसूरत पर्सनैलिटीज हैं, और जहां तक हम बात अभी तक कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के बारे में, उन सिनेमा के साथ साथ दोस्तों इस वक्त जो है दीप प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम है वो स्टेज पर शुरू हो चुका है। और स्टेज पर आ चुके हैं डॉक्टर एल मुर्गन जी, और उनके साथ में जो है प्रसून जोशी जी हैं, और उनके साथ में चंचल जी हैं, और साथ में जयदीप अहलावत जो है वो भी स्टेज पर आ चुके हैं, और डॉक्टर जो है और भी वी शांताराम जी वो भी आ चुके हैं, और इनके साथ साथ में दीप प्रज्वलित हो चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त रविंद्र नाट्य मंदिर में गूंज रही है, और एक से बढ़कर एक जो है फिल्में अब तैयार हैं इस खूबसूरत सी स्क्रीन पर आने के लिए। नीता, जहां तक हमने बात करी थी इंटरनेशनल फिल्म्स के बारे में, मैं बात करूंगा हमारी मराठी फिल्मों के बारे में।

0: महाले स्कूल कितनी खूबसूरत सी फिल्में हैं, अगर उसका पोस्टर देखा हो, मैटकुट है बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म, और अगर बात करूं इन फिल्मों के साथ साथ मुक्ता खूबसूरत फिल्में हैं दोस्तों, इन फिल्मों के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है खूबसूरत से गीत का, इन गीत के बाद वापस आते हैं और बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर और मेरे और नीता के साथ।
1: You are listening to the 19th edition of the Film Festival and right now on the dais, we are going to have the back-to-back celebrities and the honorable ministers who are going to address the audience and we are going to bring those updates live to you here from here, the Ravindranatya Mandir. Right now, it's time for a short break. We'll be back after the music. Stay tuned in and stay in tune.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में आपने काफिराना गाना तो सुना ही, लेकिन अब जो है स्टेज पर जो है सिलसिला शुरू हो चुका है सम्मानित करने का, फेलिसिटेट करने का, और बुलाया गया है जयदीप अहलावत साहब को, और उन्हें सम्मानित करने के लिए डॉक्टर एल मुरुगन जी जो राज्य मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय से, वो भी हैं स्टेज पर। साथ में हैं उनके आशुतोष गवारीकर जी, और उनके साथ में है चंचल कुमार जी। और जहां तक बात करें, अब उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। एक खूबसूरत सी शॉल और एक हाथ में फ्लावर केस है। और जो है नीता, जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया, देखिए उन्हें माइक दिया गया है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मेरे ख्याल से दिल को छू जाए।
1: यस, इट इज अ ब्यूटिफुल फेलिसिटेशन सेरेमनी आफ्टर द लाइटिंग ऑफ द ऑस्पिशियस दिया। द फेलिसिटेशन सेरेमनी स्टार्टेड, बट बिफोर दैट ऑनरेबल चंचल कुमार जी, सेक्रेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेयर्ड हिज व्यूज एंड वेलकम्ड द गेस्ट टू द 19th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। एंड कोटिंग लियो टॉल्स्टॉय, ही वेरी subtly emphasized the power of cinema and shared human experience, because it is not just the screen that we're sharing, but

0: it is all about how the society evolves. And that was really very profound coming from Shri Chanchal Kumarji himself. And right now we are seeing Honorable Dr. L. Murugan felicitating Jaideep Ahlawat, a prominent actor with a beautiful shawl on his shoulders and a beautiful frame on certificate for his contribution to Indian cinema, which is commendable. On the stage joining them are Shri Prasoon Joshi and Shri Ashutosh Govarikar as well, along with Shri Chanchal Kumar. And the ceremony has just begun, and the beginning itself is so exciting. There's a long way to go. It's going to be a beautiful, beautiful evening. The hosts on the stage are now calling the other jury members on stage, which we are going to introduce very soon to you.
1: बिल्कुल नीता, और मैं इसमें एक बात जैसे तुमने कही, अगर जहाँ तक हम बात करें, एक बहुत ही खूबसूरत बात कही अपना अहलावत साहब ने, उन्होंने कहा कि लेखक की कलम बोले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब हम जैसे लोग स्टेज पर आते हैं इस तरह के फेस्टिवल पे, तो शायद वो शब्द हम ना कह पाएं जो एक कलम कहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ में एक खूबसूरत सा गीत आपके समक्ष आने जा रहा है, और इस गीत के बाद में जो ये सिलसिला आपके समक्ष बना हुआ है 107.1 FM रेनबो पर, एक के बाद में एक आप गानों के साथ में सुन रहे हैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की लाइव अपडेट्स और फेलिसिटेशन की सेरेमनी की खूबसूरत सी जो है बातचीत। फिलहाल सुनिए इस खूबसूरत से गीत को, और मेरे ख्याल से उस गीत से पहले नीता कुछ कहना चाहती हैं जो होने वाला है जूरी मेंबर्स के बारे में, प्लीज गो अहेड।
0: यस, राइट नाउ ऑन द स्टेज वी कैन सी ऑनरेबल डॉक्टर एल मुरुगन जी, हु इज फेलिसिटेटिंग द इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स। राइट नाउ वी कैन सी हिम हैंडिंग ओवर द फ्रेम टू डॉक्टर जी प्रभा, देन देयर इज श्री रेवती सुरेश, देयर इज ऑल्सो ब्रायन टिली हु रिसीविंग द अवार्ड एग्जैक्टली एज वी स्पीक, कार्लोस फेडरिको is next, and we also have Ivan Dariel. Now all these jury members had a really tough job, because watching these films from coming in from all kinds of countries and in all kinds of languages, and then assessing them coming from a different cultural perspective altogether, it is a very difficult task, believe me. And right now they make such a pretty picture on stage with all the dignitaries here to felicitate them. The chairperson, Dr. G. Prabha, is an Indian filmmaker, writer and retired professor of Sanskrit, holding a doctorate from the University of Madras. He is best known for writing and directing Ishti in 2016, the first Sanskrit language feature film to address a social theme rather than a mythological or biographical subject. He also produced two Malayalam documentaries, Akitam in 2010 on the celebrated Malayali poet, and Agnay 2012 on a Vedic fire ritual. During his academic tenure, he published 26 research papers and authored several books in Malayalam and Sanskrit. Revati Suresh, also a part of the international jury members, is an Indian filmmaker again, visual storyteller and classical performing artist with over a decade of experience across Malayalam, Tamil and Hindi cinema, mentored by filmmaker Priyadarshan and having collaborated with cinematographer Santosh Sivan and Thirunuva Karasu. She served as VFX associate director on Mohanlal's fantasy feature Barroz.
1: कहते हैं दोस्तों कि भाषा की कोई जुबान नहीं होती, और वो भाषाएं ऐसी हों चाहे आपको समझ में ना भी आए, लेकिन आप उन्हें देखकर वो महसूस करना चाहते हो कि वो आखिर क्या आपसे कहना चाहती है। भाषा कोई भी हो, लेकिन फिल्म स्क्रीन जब आपके सामने खुलती है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कभी फिल्मों को डब्स में सुनते हैं, कभी आपको सबटाइटल के साथ में देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फिल्मों को समझते हैं। नीता, मैं बात करूं अगर आज की तारीख के अंदर किस तरह से पंजाबी फिल्मों में या पंजाबी गानों के ऊपर लोग थिरक रहे हैं चाहे उनके बोल समझ में ना भी आए, तो मैं कहूंगा भाषा ही कोई जुबान नहीं होती। और इस तरह से मुझे लगता है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ने भी जो है अलग अलग भाषाओं को एक ऐसी जगह दी है जहां पर हम सब एक हो सकते हैं।
0: एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी हैज नो बॉर्डर्स, जस्ट लाइक लव हैज नो बॉर्डर्स। लैंग्वेजेस डू नॉट फॉर्म रेस्ट्रिक्शन टू क्रिएटिविटी। राइट नाउ हियर एट द 19th एडिशन ऑफ फिल्म मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वी कैन सी इट फॉर आवर सेल्व्स। द International jury member who was felicitated right now, Brian Tilley, came to film from theatre in 1981 to work on independent documentaries, and in 1985 was a founding member of the video collective VNS Afrovision, which made documentaries

0: About social and political issues in South Africa. We also have Carlos Federico and we have Ivan Dariel. Moving on now, the dignitaries are now felicitating the jury members for the national competition, the chairperson being Gangadhar Mudaliar, and we also have Dr. Nayana R. We have with us Himanshu Prajapati and Isaac Joseph Banks. Also on stage, Anoma Rajakaruna, and all these jury members being felicitated. To give you a little brief of the jury members, the chairperson, Sri Gangadhar Mudaliar, with over 50 years in journalism, Gangadhar Mudaliar served as assistant editor at Prajavani, one of Karnataka's most respected Kannada dailies. Dr. Nayana R. is a media professional and academic, bringing over 17 years of experience across higher education and media production. And we have Himanshu Prajapati, national award-winning writer, director and FTII graduate based in Mumbai. Also, we have Isaac Joseph Banks, a New York-based cinematographer and producer whose work has earned selection at some of the world's most prestigious festivals. And last but not the least, the jury for national competition, Anuma Rajakaruna, a curator, programmer, photographer and documentary filmmaker from Sri Lanka, whose work spans over 2 decades.
1: तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो दुनिया की शायद कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह से लोग यहाँ पर हमारे समक्ष जो है आ रहे हैं और एक के बाद जो एक हैं उन्हें सम्मान से जो है पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। ये पुरस्कार क्या है? सम्मान का पुरस्कार। फिलहाल जैसे आपने बात करी नीता आइजैक जोसेफ बैंक्स के बारे में, उन्होंने किस तरह की फिल्में बनाई हैं मैं बताऊँ। 2019 में लिंगुआ फ्रांका जो फिल्म है, वेनिस डे के अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई जिसने हर तरह ब्रेक थ्रू जो है काम किया। मैं बात करूंगा रिसेंट कोलैबोरेशन के बारे में, मून ग्लो 2026 के अंदर जो बनाई, जो प्रीमियर किया गया रोटरडैम के अंदर, और अगर बात करूं पेस्काडर 2025 के बारे में, तो उसे वर्ल्ड वाइड प्रीमियर में इफी के थ्रू दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों कि जो वर्ल्ड सिनेमा है वो हर तरीके से जो है हर तरीके से मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से जुड़ रहा है, और मुझे लगता है ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। अगला ट्रैक आपके समक्ष आ रहा है अब है जोधपुर की आवाज में।
0: Well, before we go on to the next track, let me just tell you what is happening on stage. I'm so excited. The music is also going to be by your side. But right now, we have 3 beautiful women on stage looking elegant. And they are the jury for the Fipresky Critics Prize. We have Rita Datta, we have Coco Endo Inada, and we have Barbara Laurie, whom the dignitaries are felicitating right now on stage. Rita Datta is a professor, film critic, and editor whose scholarly work spans a national and international cinema discourse. She has edited cinematic cartography mapping the breadth of Indian film landscapes in 2025 and serves as editor of the international film journal Film Buff. Then we have with us Coco Endo Inada, looking as pretty as you can imagine, a Tokyo-born film critic and former editor at leading Japanese publishing house Kobunsha, where she spent 2 decades in weekly news magazine editing and rights management. Also on stage we have Barbara Laurie, a Paris-based German film journalist, curator and festival consultant with extensive experience across the international film festival circuit. Well, these beautiful ladies and the myriad of languages, films and countries that we can see at the 19th International Film Festival just brings about to show us that how much diversity can be beautiful, and I am so thrilled to be a part of this right now.
1: दोस्तों ये ताता कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये ताता बड़ा ही खूबसूरत है। और हम बात करूं आशुतोष गवारीकर साहब की, जिन्होंने भी बड़ा ही खूबसूरत सा जो है सम्मान दिया है। वहां पे जितने भी जो जूरी मेंबर आ रहे हैं साथ में है जयदीप अहलावत और श्री चंचल कुमार जी। बताना चाहूंगा आपको कि 7 बजे होने वाले मराठी में समाचार जो होंगे सिर्फ 10 मिनट के, और दोस्तों इन 10 मिनट के समाचारों के साथ साथ मैं आपके साथ नीता आपके साथ वापस आएंगे मिफ में, यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर रेड कारपेट पर आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक लोगों की दास्तां जो छोटी से बड़ी फिल्मों की होने वाली है। फिलहाल आशीष कौर की आवाज में आप सुनिए 107.1 FM रेनबो पर ये खूबसूरत सा गीत। 7 बजे के मराठी समाचारों के बाद में वापस से ये कारवां कंटिन्यू।

0: च्या आवृत्तीत मराठी चित्रपट आणि इकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असे दोन नवीन विभागही सुरू केले आहेत. मिफमध्ये यंदा प्रथमच एआय सिनेमा हॅकेथॉन आयोजित केली जाणार आहे. या स्पर्धेत 48 तासात चित्रपट निर्मितीचं आव्हान असेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बोट बांधण्याचा कारखाना उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं. ते आज सिंधुदुर्ग इथं बातमीदारांशी बोलत होते. जिल्ह्यातले अनेक युवक युवती रोजगारासाठी जिल्ह्याबाहेर जात असतात. या कारखान्यामुळे जिल्ह्यातच रोजगार निर्माण होईल असं राणे म्हणाले. गेल्या 24 तासात राज्याच्या चारही विभागांमध्ये तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला. कोकणात तुरळक ठिकाणी कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झाली तर विदर्भात किंचित वाढ झाली. येत्या 2 दिवसात विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता आहे. कोकणात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या चारही विभागांमध्ये तुरळक ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 22 जून ते 10 जुलै दरम्यान मुंबईत होणार. उन्हाळी हंगामात केलेली 10% भाडेवाढ आणखी महिनाभर कायम ठेवण्याचा एसटी महामंडळाचा निर्णय. विदर्भ वगळता राज्यात इतरत्र नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात. शाळा प्रवेशोत्सवाद्वारे विद्यार्थ्यांचं स्वागत. अमेरिका इराण शस्त्रसंधी कराराच्या शक्यतेनं सलग 2र्या सत्रात शेअर बाजारात जोरदार तेजी. आणि 19व्या मिफ अर्थात मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला सुरुवात. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: पर आप सुन रहे हैं मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से एक से बढ़कर एक स्टेज की न्यूज, रेड कारपेट की न्यूज और वो सारी बातें जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं, यानी कि 15 जून से लेकर 21 जून के दरमियान. अभी आपने सुने मराठी समाचार. इस वक्त मेरे साथ हैं आरजे नीता और हम अपने सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से क्लासिकल डांसेस. इनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी नीता?
2: वेल केथ द air here is so exciting at Ravindranath Mandir where we are live watching the 19th edition of the Mumbai Film International Festival 2026, and the air is currently thick with the scent of jasmine and the electric anticipation of a global audience as the formal inauguration of Mumbai International Film Festival 2026 unfolds. The stage has been transformed into a canvas of rhythmic storytelling by Radhika Phanse and her troupe. Radhika Phanse, let me tell you, Keith, known for her precision in Kathak and her ability to weave contemporary narratives into classical forms, is leading this breathtaking piece titled Srishti Ki Dhwani. The stage is bathed in a deep cinematic indigo with the backdrop on the LED so beautifully standing out and echoing the festival's branding. Radhika and her 8-member troupe are dressed in stunning outfits and rust orange silks. They are gungroos catching the spotlights like sparks of fire, and the performance began with a slow meditative alap symbolizing the blank canvas of a documentary filmmaker. As the tempo built into a rapid tatkar, which is a footwork, the dancers mimic the flicker of a film projector, and the fusion happened in a nod to MIF's theme of technology meets tradition. The classical footwork is synchronized with a digital backdrop, showing a montage of vintage celluloid evolving into modern digital pixels. And this jugalbandi isn't just between the dancer and the tabla player, but between the live tradition on stage and the recorded history on the screen. Well, while the opening and closing ceremonies of the grand stage of Ravindranath Mandir are being graced here, the festival is designed to be a city-wide celebration. Keith, let me tell you that if you are planning your week, here is where the magic of cinema is happening. The main festival hub is the NFDC Films Division Complex at Pedder Road. All major international and national competition screenings, dog bazaar and master classes are going to be held here. Obviously, as I told you, that the ceremonial venue, the Ravindranath Mandir at Prabhadevi, and a special daily showcase of Marathi documentary cinema is going to be held here. Also, we have the Student Hub, which is the UPG College of Arts and Commerce in Ville Parle. Parallel screenings of youth-centric shorts and animation to engage the western suburbs. And last but not the least, we have the St. Paul's Institute from Spice, Bandra, Media and Craft Hub. Screenings focused on technical excellence and communication-driven documentaries are going to be held here. And let me tell the listeners that this, yes, I am excited because the student delegate registration is completely free and at these satellite campuses. It's a great way for the younger crowd in Bandra and Ville Parle and all across these western suburbs, not to limit them to the western suburbs, but all across Mumbai to catch world-class cinema without trekking to South Mumbai all the way to Pedder Road.
1: तुम्हें सुनने के बाद में मुझे बिल्कुल लग रहा है कि दो साल के अंदर एक ही बार आता है ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, और जो दिल के अंदर होती है ना चीज़ें वो मेरे ख्याल से वो निकलती चली जाती हैं और शायद जबान भी जो है शब्दों की अधीन हो जाए, ये वाली बात इसके सामने जाहिर है। मैं कहूंगा जिस तरह से डांस के फॉर्म, नृत्य हम देख रहे हैं एक से बढ़कर एक, मैं कहूंगा मराठी फॉर्म्स कह सकता हूं, महाराष्ट्र के फॉर्म्स देख सकते हैं, कदरी देख सकते हैं आप, और क्लासिकल डांस की ऐसी खूबसूरत सी फॉर्म्स मेरे ख्याल से जो कह सकते हैं झांकी के रूप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन आम जिंदगी में इस तरह के नृत्य अगर देखने को मिले तो शायद हमें वो दशक याद आ जाएगा जो शायद तुम रिलेट करके बता पाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम महाराष्ट्र से ही हो, तुम इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर सकती हो कि जिस तरह की डांस फॉर्म हम अपने सामने देख रहे हैं, जिस तरह के ठुमके हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग्स हैं और जिस तरह के वो बोल हैं, वो बाय गॉड काबिले तारीफ हैं। और जहां तक दोस्तों हम बात करें तो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है?
2: Yes, right now we are seeing a lovely performance by the same troupe and it is beautiful. We are seeing the warrior montages on the LED in the backdrop and these eight warriors who are dressed in the traditional Marathi costume with the turban, so beautiful. And Radhika Phanse and her troupe is back on stage in silk white, off-white lehenga and choli and sky blue dupattas embellished with silver artwork and some green motifs, and it's looking so pretty Keith. The elegance of Kathak is coming out so vividly on the stage of the Mumbai International Film Festival 2026.
1: और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंसानों के सिर्फ पहनावे के अलावा जो मुस्कान और चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो सबसे बड़ा गहना है और एक नृत्य के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की पोशाक हो उसके हिसाब से उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस हो, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उनके एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं काबिले तारीफ हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से धनुष ताने हमारे सामने जो एक बड़ी ही खूबसूरत सी फॉर्म में एक आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं जो इस गाने में इस संगीत में चार चांद लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल से सिलसिला शायद कभी थमने ना माले वाला हो, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हम देख रहे हैं डांसर्स या यूं कहो कि एक से एक गुणवान प्रतिभाशाली वो नृत्यकार जो शायद आम जिंदगी में हमें देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की फॉर्म्स वक्त के साथ काफी कम हो गई हैं।
2: द ब्यूटी ऑफ दिस डांस केथ इज दैट इट इज नॉट जस्ट देयर नॉट जस्ट डांसिंग टू म्यूजिक, इट इज स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ, यू नो, अ फ्लोइंग वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी एंड इट कम्स आउट सो ब्यूटिफुली ऑन द दिस ग्रैंड प्लेटफॉर्म एट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द लवली परफॉर्मेंस करंटली दैट जस्ट गॉट ओवर, इट टुक प्लेस एंड हैज शिफ्टेड द एनर्जी ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी फ्रॉम meditative to pure unadulterated electricity. Radhika Phanse and her troupe have brought the soul of Maharashtra to the MIFF 2026 stage performance, and that is as much about theatrical storytelling as it is about rhythm. And right now all the dancers have come in together on the stage and it is a beautiful amalgamation. We can also see Bhangra dancers in their yellow and purple costumes that is vividly lighting up the stage with the Kathak dancers, and behind them now we have the traditional Rajasthani costume folk dancers and also the Lavani dancers with the lazim and the mythological characters that have the entire team is on stage, and it is such a beautiful picture. The auditorium is vivid with the thunderous applause. The lights are getting dim and we're all breathtakingly waiting for what is going to happen next.
1: बिल्कुल, और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पूरे भारत के अलग अलग जगहों के नक्शों में हम रंग देखते हैं, आज वो सारे रंग जो हैं हमारे सामने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्टेज पर सद गए हैं। और इसी के साथ में स्टोरी टेलिंग का कहानी का ये जो जरिया है, जो तरीका है, ये अभी पूरा हुआ है और अब कुछ अलग लगता है स्टेज पर होने जा रहा है, जिसका इंतजार हम बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। क्या कहती हो नीता?
2: यस, यू कैन सी दैट द एंटायर ऑडियंस इज सो ब्रेथ टेकिंगली वेटिंग एंड एक्साइटेड टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दे राइट नाउ अप्रिशिएटिंग एंड

0: acknowledging, and a huge round of applause is for all the dancers, because a mini India sort of was created on stage by Radhika Phanse and her troupe, and the entire audience is vivid with imagination, waiting to for everything to unfold on stage. We are going to have the screenings of the three films that we spoke about also. Keith, do you remember the three films that are going to be screened at the opening ceremony here at Ravindra Natya Mandir? There is going to be Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kyla Daniel Romero. This movie comes in from Philippines, and it is in Filipino and Tagalog language. A 15-minute film which was made in 2025. Also, we have Good Luck to You All, directed by Cordell Barker, a Canadian film. The language is in English. It's an 8-minute short film, and it was made in 2025 as well. Also, we have Time and Water, directed by Sarah Dosa, from United States, Iceland, all the way, and it's in English and Icelandic, 93-minute film, and it was made in 2026.
1: और बिल्कुल, और इन सारे फिल्मों के साथ साथ अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो मुझे लगता है ये अवार्ड्स कभी ना थमने होने वाले हैं, क्योंकि 21 तारीख तक जब बैक टू बैक आप एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देखते हैं, क्योंकि ये फिल्में बेशक बहुत बड़े पर्दे पे ना हो, लेकिन एक ऐसे पर्दे पर हैं जिसमें आपकी पहचान छुपी हुई है और जिसके लिए आपको पुरस्कारित किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, और जहां पर सिर्फ अवार्ड ही नहीं, आपको रिवॉर्ड भी मिलता है और एक ऐसी पहचान मिलती है जो शायद हर जगह मिलनी मुमकिन ना हो। और इसके साथ में बात करूं मैं वर्कशॉप्स की, जो वर्कशॉप्स हैं वो भी कमाल की। और तुम जानते हो बुसान जो है उसकी नेक्स्ट वेव भी हमें इस बार मिफ में देखने को मिलेगी, और ये जो है काबिले तारीफ होने वाली है, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है इसमें बुसान की जो नेक्स्ट वेव है मुझे लगता है एक अलग ही पहचान छोड़ने वाली है। और इसके बारे में अगर तुमसे एक बात और कहूं, एक फिल्म जो है मैंने जैसे देखा तो मुझे कहीं ना कहीं उनके मन में आया कि इसके बारे में बात की जाए। इसका नाम जो है बड़ा ही बेहतर है कि आई एम नॉट अ रोबोट। ये जो है एक कैप्चके के ऊपर है कि किस तरह से हम आम जिंदगी के अंदर हम जब भी कोई साइट को लॉगिन करते हैं तो किस तरह से कैप्चके के जाले फंस जाते हैं और कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो जो है हम कर नहीं पा रहे क्लियर। हमें लगता है हम कीबोर्ड से बिल्कुल सही फॉन्ट टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कैप्चका राइट जो है पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो फिल्म है इसने बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना ली है। नीदरलैंड से ये फिल्म है और ये फिल्म जो है 100 से भी ज्यादा अवार्ड जो है मैं कह सकता हूं शायद ले जाए, क्योंकि इसकी जो डायरेक्टर है जिनका नाम है विक्टोरिया वामडैम, उन्होंने ये फिल्म बनाई है जो शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। इससे पहले उन्होंने मुस्टैचो बनाई, उससे पहले उन्होंने बनाई शॉर्ट काफ मस्कल, जिसे 100 से भी ज्यादा अवार्ड मिले। वेल, स्टेज पर एक और बड़ी खूबसूरत सी हस्ती है। नीता, प्लीज, आप जैसा ये जान रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगी?
0: Well, bringing you back to the stage of the MIFF 2026 19th edition, right now on stage we have Honorable Advocate Ashish Shelarji, Minister of Information, Technology, Electronics, AI and Cultural Affairs for the Government of Maharashtra, and he is addressing the audience and greeting and welcoming the dignitaries right now, and he has some profound insights on how and what the cultural importance of MIFF lies in, and we are going to bring that to you soon. Right now let me talk about the schedule tomorrow. If you have not downloaded it as yet, then you should go to the NFTC's website and figure out which movies you are looking forward to see and where it is going to be screened, whether it's going to be screened at Pedder Road or in Bandra or in Villeparle, or if you are a Marathi movie lover, it can be screened at Ravindra Natya Mandir too. So yes, you have to be figure out which place is closer to you, which what you're interested in, because there is going to be different things happening here. They've extended this Mumbai International Film Festival all across the city, and I'm so excited. I am feeling like Keith, I wish I was cloned for this week so that I could be in all these places at the same time.
1: The way you are expressing yourself, soon you will be everywhere, I would say. Well, दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में हम सभी मॉडर्न हो गए हैं, तो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप जो है मिफ की जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आपको सारी चीजें अपडेटेड मिलती चली जाएंगी, चाहे वो वर्कशॉप्स के बारे में हो, चाहे वो फिल्म्स के बारे में हो, चाहे वो अवार्ड्स के बारे में हो, चाहे वो जो उस दिन के अंदर होने वाली चीज है वो भी उसके अंदर वक्त वक्त पर अपडेट कर दी जा रही है। वेल, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि इस फिल्म के बारे में मैंने आपसे जैसे बात करी, और जो फिल्म है ये फिल्म काबिले तारीफ है। ये काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि अभी से ही बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गई है। और फिल्म के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा वर्कशॉप के बारे में। देखिए कहते हैं कि बड़े पर्दे की जान जो है वो एक सिनेमाटोग्राफर ही लेकर आता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सी वर्कशॉप जो है 17 जून को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होने जा रही है, द सोल ऑफ सिनेमाटोग्राफी वर्कशॉप, जो मधुरा पली जी करने वाली हैं, जिन्होंने पहले जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है, अमर कॉलोनी, किशमिश, खच्चर मानुष, दिल खुश और टेप का। तो इसके बारे में नीता, तुम जो है मान लीजिए तुम्हें मौका मिले आप को कोई मूवी बनाने का बतौर सिनेमाटोग्राफर, आप उस जगह पर अपने आप को कैसे देखती हैं? और मान लीजिए आपको ये फिल्म जो है मोबाइल पे शूट करनी है और मिफ के अंदर भेजनी है।
0: Well, right now, Honorable Advocate Ashish Shelarji is saying the same thing, that he is welcoming entire India to come down to Mumbai because we have created this ecosystem, and he is inviting everyone who has creativity and talent and who is brave enough to bring their creativity down here so that we can showcase them here in Mumbai. And he's welcoming entire India to come here. And he is talking about Akashvani, how it is a hub for media right now here in Mumbai. Also talking about the sessions being held at the NFDC. So the session number one, which will be held tomorrow at 11:30, it's going to be a panel discussion, and the topic is going to be fast film, is microdrama the fast fashion of cinema? And we are going to have noted speakers Sameer Modi, Archana Kavi, Ujwal Chopra, Rafael Stemple Whisky, and the moderator is going to be Cheena Chauhan. If you're interested in microdrama, then this is where you have to be. The other session number two is going to be at 4:15 p.m. and it's going to be a workshop from idea to outline, the anatomy of a scene, how it's done, and it's all going to be spoken about by Biplab Goswami. Well, there are many such workshops. I'm going to keep you updated on 17 June, 11:30 a.m. There's going to be a masterclass on Stanislavski and the search for human truth, which I am planning on definitely to visit, from theater to documentary cinema. And the speaker is going to be Fabrice Carey. And 4:15 p.m. So all these workshops are going to be either at 11:30 a.m. or 4:15 p.m. One session, two sessions each day, one at each time. And the session number four, 17 June, 4:15 p.m. It's a workshop on core craft and visual language, the soul of cinematography. And the speaker is Madhura Palit. And if you are somebody who's aspiring to become a cinematographer, then this is the place to be. On 18 June, there's going to be a round table at 11:30 a.m. Many Forms, One Vision, celebrating diversity in film festivals. The speakers we have on the round table: Anand Varadraj, Deepak Bishra, Premendra Mazumdar, Nilopai Mazumdar, Naga Savitri Hari, Patricia Sanchez Mora, Prakash Magdum, and the moderator, Sheena Chauhan. For those of you who are not that tech savvy, here I am telling you the schedule for the next 2 days at least. I will be bringing in more, but right now they are showing the nominees for the international competition, 42 languages competing in 3 screens, 7 awards, 2.25 lakhs. We have a cover, My Bee Family, Kicking Toward Tomorrow, Abiskar, the debut, The Hoarders from Taiwan. And for the national competition, we have the 8 heroines, Rani Gaiduli, We Heard the World Looks Beautiful, Desi On, Beacon of Light, and competing in 4 sections, Croak Show, Coverty, Saluna, A Child's Dream, Finding Nabi, Roses Are, Ye Hai Banaras, from and Ram Leelas of Odisha, Armstrong from Angalaman. And these are all the movies that are going to be participating in the national competition. The non-competition, the 204 films coming in from 48 countries with a myriad of 55 languages, Mosaic Documentaries, Best of Fest Award, Animation Canvas, the Best of Global Animation, Busan Next Wave, as Kate said. Then there's going to be Oscar winners. Then there's going to be the NFTC Showcase, NFAI Restored Classics, PSBT Presents, एंड मिफ सिनेमैटिक इमर्जिंग वॉइसेस फिल्म स्कूल एडिशंस 125 ईयर्स ऑफ वी शांताराम 100 ईयर्स ऑफ डेविड एटनबरो मराठी फिल्म्स एंड एकोस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दीज आर ऑल इन द नॉन कॉम्पिटिशन कैटेगरीज द गाला प्रीमियर्स एज वेल एंड देर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस.

0: Lab, there's the Dog Film Bazaar, there are going to be B2B meetings and a lot of excitement happening at the Mumbai International Film Festival. I can't just get enough of it, and so should you. You have to be there to see for itself.
1: और मुझे लगता है कि जब नीता ने आपको इतना सब कुछ बता दिया है और मेरे ख्याल से इतनी सारी बातों को दिमाग में रखना, जहन में रखना इतना आसान नहीं है, तो आप मिफ की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथ में न्यूज़ ऑन एयर की ऐप को भी, ताकि आपको एफएम रेनबो पर इस तरह के फेस्टिवल्स की पूरी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों 107.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं आज नीता और आरजे केत को, जिसमें आप सारी फिल्मों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और फिल्मों के साथ साथ क्या क्या वहां पर वर्कशॉप होने वाली हैं, किस किस तरह के जो हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और वेब बाजार की दुनिया एक बहुत बड़ा मकाम लेकर आई है 15 जून से लेकर 21 जून के दरमियान। तो दोस्तों इसमें ऑस्कर नॉमिनेशन जो डायरेक्टर्स हैं, जो इसके अलावा मैं कहूंगा सिनेमाटोग्राफर्स हैं, उनसे बड़ी ही खूबसूरत सी वर्कशॉप जो है आप ले सकते हैं। फिल्में देखने के पसंदीदा हैं आप, कोई डे आपको स्पेसिफिक चुनना है 15, 16, 17, 18, अपनी जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप वहां पर जा सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। वेल, इन सब के चीजों के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पंछियों की कोई जबान नहीं होती, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है इसके अंदर जो अटूट करके अनब्रोकन के नाम से है। ये फिल्म जो है 8 मिनट की और भारत से ही आई है, अंग्रेजी में फिल्म है, जिसके अंदर जो पंछियों की दास्ता होती है वो किस तरह से आपस में बात करते हैं जब ऊपर से प्लेन गुजरता है, जब बिजली की तार में करंट आता है, या फिर वो सरहद पर सिपाहियों को देखते हैं, उनके बीच की दास्ता वो बताती। इस तरह की और भी कई सारी कहानियां हैं। अगर मैं बात करूं बर्डन ऑफ डाउट के बारे में, वो भी इंडियन फिल्म है, 7 मिनट की एनिमेशन फिल्म है। तो मैं अगर बात करूं तो जहां पर डॉक्यूमेंट्रीज एक से बढ़कर एक आ रही हैं, उसी तरह से एक से बढ़कर एक जो है एनिमेशन फिल्म भी आ रही है। और इसके हिसाब में डॉक्टर एल मुर्गन जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस वक्त जो है स्टेज पर आ चुके हैं और जो है जितने भी लोग हैं वहां पर उन्हें संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर होने जा रही हैं और आप किस तरीके से उनका हिस्सा बन सकते हैं।
0: Yes, right now on stage we have the Honorable Dr. L. Murugan, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs. I gave you all the information about the workshops and the sessions that are going to take place at NFDC Pedder Road. Also, there are going to be some open forum sessions which you should not miss. On the 16th of June, the open forum, the topic is going to be, is AI the future of creativity? And it is going to take place at 1 p.m. daily. On 17 June, the topic is going to be documentary as a means of archiving men moments and memories. And on the 18th of June, at the same time, 1 p.m., the open forum is going to be about are young filmmakers redefining documentaries. And on the last day, the day before last, 19th June, 1 p.m. we are going to have the topic Streaming Revolution, Documentaries in the Age of OTT. And last but not the least, on the last day, the 20th June 2026 at 1 p.m. it's going to be a 1 hour open forum and the topic on the last day is going to be Changing Technologies, Changing Audiences. Are film festivals in transition? Well, these are such interesting topics, and if you want to listen to the discussion or be a part of it or you want to voice your opinion, you know where you have to be. And right now, the Union Minister of State for Information and Broadcasting, Honorable Dr. L. Murugan, on the stage is welcoming the audience, the dignitaries, and he is very beautifully blending in the importance of such a film festival in coming into, you know, the traditional way, coming into synchronicity with technology. And his views are giving us a lot of valuable information and insight, and we are going to soon listen to those as well. Right now it's time for a song, and Amit Trivedi is coming your way on 107.1 FM Rainbow. This is Akashwani's FM Rainbow channel. Ye hai Akashwani. Stay tuned in and stay in tune.
1: दोस्तों बने रहिए, एक के बाद आप एक जो है गाने तो सुनेंगे सुनेंगे, पर उसके साथ में आपने जैसे सुन रहे हैं कि फिल्में भी किस तरीके की आ रही हैं, किस किस दिन को आप अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं, आपने सब चीज जानी है। और अगर कोई भी चीज आपने मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, आपको मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की जो ऐप है डाउनलोड करनी है और उसके अंदर आप सारी जानकारी

हासिल कर सकते हैं, या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप को डाउनलोड करके एफएम रेनबो पर जाकर भी आप इसको जो है अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल अगली आवाज अमित त्रिवेदी की

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिलहाल आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने, और इन गानों के साथ में अब आप सुन रहे हैं वो खूबसूरत सा कारवां जो स्टेज पर चल रहा है। वेल, इन सब गानों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है स्टेज पर हमारे समक्ष बिल्कुल है प्रकाश मखदुम जी, जो मिफ यानी कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं, और वो सभी को जो है सम्मान जो है उसे संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो अहलावत जी हों और फिर डॉक्टर एल मुर्गन जी हों और उनके साथ में जितने भी वहां पर अतिथि गण हैं। हम बात करें जहां तक नीता, इस समारोह में जितनी भी बातें कही जाए उतनी कम, चाहे हम उसकी नृत्य शैली की बात करें, स्टोरी टेलिंग की बात करें, डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें, या फिर हम इस फिल्म के 15 से 21 दिनों में जो होने वाली वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में बात करें, क्या कहती हो तुम?
1: Well, right now on stage is the Honorable Minister Dr. L. Murugan, who just took stage and made a massive announcement about the Waves Doc Bazaar, a literal stock exchange for filmmakers to get their stories funded and onto your streaming screens. Well, if you talk about Doc Bazaar, Keith, you must know that This documentary bazaar is a very unique and one of a kind pillar of MIFF 2026, running alongside the main festival from the June 15th to the June 21st, 2026 at the NFDC head office in Pedder Road. It serves as South Asia's premier launchpad for connecting global buyers, distributors and streaming platforms with independent documentary, short film and animation creators. The Waves Doc Bazaar, it was also known as Doc Film Bazaar earlier, it is the specialized B2B market segment of MIFF, and while the rest of the festival is about screenings and celebrating finished cinema, the Doc Bazaar is the engine room where future films are funded, they are bought, they are shaped. And on the very first day of the bazaar, a highly selective group of projects gets to pitch directly to a room full of international buyers, festival programmers and broadcasters. Out of 155 global submissions across 19 countries, only 12 standout projects were curated for the Waves Doc Bazaar list this year, and to heavily back independent talent, the NFDC has introduced direct cash grants of 3 lakh each for 3 outstanding projects to help them cross the finish line. For filmmakers who have shot their documentaries but are stuck in a tricky editing stage, the WIP lab, it's called the Work in Progress lab, is a closed door high intensity sanctuary. Selected directors present their raw rough cuts to a specialized panel of international advisors and veteran editors, receiving direct mentorship to polish their narrative structure before taking it to the global market. Also, not to forget the VR, the viewing room. Think of this as a secure massive digital library for the film industry.
0: और इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज का ये खूबसूरत विषय जो है 18 जून से होने वाला ऑटिस्टिक गौरव दिन के बारे में जो सहभाग है डॉक्टर मोना गजर यानी आरोग्य संपदा, और इन सब चीजों के बीच में मैं बात करना चाहूंगा कि अब जो खूबसूरत सी एक और स्टोरी स्टेज पे शुरू हो गई है, और ये स्टोरी भी नृत्य के माध्यम से बताई जाएगी, और इसके अंदर मैं कहूंगा कितनी भी चीजें जोड़ी जाएं वो कम है, क्या कहती हो नीता?
1: एग्जैक्टली, कमिंग बैक टू द डॉक बाजार, द व्यूइंग रूम, थिंक ऑफ दिस एज अ सिक्योर मैसिव डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। दिस ईयर द व्यूइंग रूम होस्ट 155 प्रोजेक्ट्स स्पैनिंग 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस। रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स use this encrypted server to scout for hidden gems, acquiring distribution rights or provide vital gap financing to films that are nearly finished.

0: Indian cinema is capable of, you know, having no limits. Sky is the limit for it. And the way he spoke about amalgamating culture and tradition with AI and technology, and they kept evolving. So earlier they were only, you know, helping out, or first in terms of viewership and acknowledgement and appreciation, and then came the monetary gains and the golden couch and the silver couch, and then came this Doc Bazaar, where you can actually pitch your film and you can find producers for them. And then moving one step ahead, they now have these work in progress labs. So if you are a filmmaker and you are stuck at any stage while you're making your films, and then you can receive help over there for that as well. It is so beautiful, you know, and so I would say motivating.
1: Neeta, main bilkul samajh sakta hu jis tarah se tumne apni puri baat ko kaha hai, lekin isi ke साथ में अगर हम बात करें समारोह की, ये समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है दोस्तों, और इसी के साथ में मैं कहूंगा आज जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात करी, डॉक्यू बाजार के बारे में हमने बात करी, या फिर वर्कशॉप्स के बारे में बात करी, 15 जून से लेकर 21 जून के बीच जो सिलसिला होने वाला उसके बारे में आपको अपडेट दी, मैं इतना कहूंगा कि अब ये पूरा हो चुका है। बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मेरे साथ और नीता के साथ, आने वाले कुछ दिनों में आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अब आ चुका है वक्त आप लोगों से कहने का कि बस ट्यून रहिए, क्योंकि खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी, अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से आज श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी आए, जिस तरह से उन्होंने बताया मिफ के बारे में, श्री प्रकाश मखदूम जी आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से मिफ को ऑर्गेनाइज किया गया, और जिस तरह से उन्होंने जितने भी गेस्ट हैं उनको आभार प्रकट किया, और उन फिल्मों के बारे में बात करी, डॉक्यू बाजार के बारे में बात करी, एआई के बारे में बात करी, और शायद ही ऐसा कोई पहलू छोड़ा है जो आने वाले वक्त में शायद पूरा ना हो सके। लेकिन कहते हैं कि कभी भी कोई चीज मुकम्मल नहीं होती, उसमें हर चीज की कड़ी जुड़ती रहती है। तो ये वक्त आपसे विदा लेने का, और नीता आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं?
0: Well, if we see the auditorium right now, Keith, the lights inside are starting to dip into a deep cinematic blue, and in just a few moments, the opening ceremony is going to conclude, and the crowd is going to move out into the open courtyards and migrate into the state-of-the-art screening halls. The heavy curtains will be pulled back, and the international film community is going to visit the projector, as the projector will spark to life, and the 2026 festival will officially be declared open. So Keith and me, we're going to sneak into the back of the theater to catch the opening screening, but don't you go anywhere, we'll be bringing you exclusive backstage interviews, masterclass updates, and daily film reviews all week long. So keep your eyes on the world and your radio dial locked right here to 107.1 FM Rainbow. This is RJ Neeta and RJ Keith Handa signing off. Stay tuned in and stay in tune.
1: बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए, और आपसे कहेंगे कि FM Rainbow पर अब बहुत जल्दी और भी कार्यक्रम शुरू होंगे। इस तरह से आपने सुना मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को, जिसमें आपने सारी अपडेट्स जानी। बहुत जल्द आपसे वापस मुखातिब होंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 एफएम, आकाशवाणी पर।
0: ये आकाशवाणी है।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।

0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in। यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाईट वर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर

नैन तो नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन हाँ आई एम श्योर आप लोगों के कान मेरी आवाज़ को ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। आज 5 से 8 के बीच शर्मीन संग शामिल होने थे आप लोगों ने, लेकिन आपने सुना मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसकी जो है ऑफ ट्यूब आपने बिल्कुल ही कमेंट्री सुनी, और आपने जाना कि कहाँ कहाँ कौन सी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में जो है दुनिया भर से आई हैं हमारे मुंबई शहर में। सो अभी जो है हम तुम इस प्रोग्राम में, मैं बस यही कुछ जो लम्हे रह गए हैं उसमें आपको कुछ गाने सुनाकर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। थर्सडे को हम मिलते हैं सुबह में 11 का जो हमारा शो होता है, फिर दोपहर तक चलता है वो 2 बजे तक, तो तब यकीनन ज़रूर हम मिलेंगे। थर्सडे को ट्यून इन करना नहीं भूलिएगा, FM रेनबो 11 to 2 का हमारा शो होगा। ये गाना आपने सुना जब हैरी मेट सेजल से, तो चीर रहना निखिल डिसूजा गा रहे थे, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन थी। और अब एक और मज़ेदार सा गाना, ये दोनों भी आज जो गाने चूज़ किए थे मैंने वो मैंने काफ़ी टाइम से प्ले नहीं किए थे, तो सोचा प्ले कर दिए जाए। उसी में से एक है ये सोनू निगम रीटा शर्मा की आवाज़ें, समीर ने इसे लिखा, हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन, टॉम डिक एंड हैरी से आ रहा है ये गाना, ये वो कशी कशी मी लोकेड ये नर। थर्सडे को मिलूंगी मैं आपसे 11 से 2, अभी के लिए अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

0: मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित,

0: G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी।
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय

0: मार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news.

0: के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक

0: सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम है रंगे महफिल। आइए खूबसूरत वादियों की सैर करें, एक ऐसे जजीरे की सैर करें जहां मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहां कोई आवाज देता है तो मोहब्बत का गुमा होता है। चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है, हुजूमे दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है। चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है।

कभी फुर्सत मिले तुम्हें तो एक छोटी सी मुलाकात ज़रूर कर लेना। कभी फुर्सत मिले तुमको तो उन लम्हों को याद कर लेना, उन लम्हों को देख लेना जो हमने भीड़ में खोए, जो न जाने कितने कामों की नज़र कर दिए। न कोई ख्वाब का पैकर, न कोई चाहत का किस्सा, फ़कत एक बोझ है जी का जिसे हम ढोते रहते हैं। अगर कभी मुमकिन हो थोड़ी देर थकन को भूल जाते हैं, किसी कच्ची सी पगडंडी पे खुदी से मिलने जाते हैं, किसी कच्ची सी पगडंडी में खुदी से मिलने जाते हैं। तुमने बहुत वक्त गुजारा कहीं पर, तुमने एक बार न सोचा कि इस दिल पर क्या बीतेगी। फिर भी कभी फुर्सत मिले तुम्हें तो उन लम्हों को देखो।

0: और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ जनाब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम है रंगे महफिल। रंगे महफिल वही प्रोग्राम जिसमें कुछ किस्से छेड़े जाते हैं मोहब्बत के, कुछ लम्हों को याद किया जाता है, कुछ पलों को हम जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं। और क्या कहती है तबीयत, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: एग्जाम

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एग्जाम हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मैं कैसे कहूँ, तो क्यों ना चाहतों का हिसाब लिख दूँ, आ तुझ पे कोई किताब लिख दूँ, कभी किसी से किया ना जिसने मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूँ, मेरी नज़रों में जो बस गया है वो दिलकशी वो जमाल लिख दूँ। बहुत दिनों से सोचती हूँ हर शाम तेरे नाम लिख दूँ, अब गवारा हो तुझे तो ये जिंदगी तेरे नाम लिख दूँ।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: प्रोग्राम रंगे महफिल इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की रेनबो चैनल पर। ये मोहब्बत बड़ी अजीब शय है। मोहब्बत हो जाए तो भी मुश्किल, ना हो तब भी मुश्किल। लेकिन बात यहाँ आती है कि आखिर जिससे आपको मोहब्बत है उससे आप क्या कहें, कैसे कहें। कहा है ना किसी ने, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। और वाकई ये मोहब्बत कुछ ऐसी ही दर्द देती है, कुछ ऐसा ही सिला देती है। लेकिन ये मोहब्बत तब भी होती है जब ये दर्द देती है, जब ये मुस्कुराहट देती है, खुशियाँ देती है, तब भी मोहब्बत होती है। दरअसल ये मोहब्बत इस दिल में होती है, और अगर ऐसे में वो ना हो सामने तब भी लगता है काश वो सामने हो, और जब सामने हो तो समझ लीजिए कि आप कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये कहने में मुझको

ये जो आंखें हुआ करती हैं, इन आंखों में मोहब्बत होती है, इन आंखों में अपनापन होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इसे कितना महसूस कर पाते हैं। और जब बात मोहब्बत की आती है तो ये मोहब्बत, जैसे अभी हमने बात की ही थी कि मोहब्बत पहले भी थी, मोहब्बत अब भी है। मोहब्बत तब भी थी जब तेरे कदमों की आहट सुनने के लिए ये दिल बेकरार रहता था, तेरी हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी आंखों के जादू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरी बातों से, तेरे आने से, तेरे जाने से, मुझे तब भी मोहब्बत थी और आज भी तेरे रूठने से मोहब्बत है, आज भी तेरे नाराज होने से मोहब्बत है, तेरे आने से आज भी मोहब्बत है और तेरे जाने से आज भी, तेरी राहों में रुकने से, तेरे पलकों के झुकने से, तेरी बेजा शिकायतों से, तेरी हर एक आदत से, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे आज भी मोहब्बत है। कभी आना मेरे पास, जब कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो समझ लेना वो मुलाकात एक मुलाकात नहीं, एक जिंदगी है, क्योंकि मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है। काश मुलाकात वहीं रुक जाए, काश वो लम्हे आगे ना बढ़ें, तुम शिकायतें करते रहो और मैं मोहब्बत करती रहूं।

और हमें भी आरजू रहती है कि आप सब हमारे साथ रहें, प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं और अच्छी मौसीकी और साथ में महसूस करें इन गुजरते हुए पलों को। हमारे साथ एम राजकुमार हैं त्रिची टीएन से और सुन रहे हैं कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश भल्ला जी, एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से, लिखते हैं शुभ संध्या, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपके साथ तब तक जब तक नींद ना आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए और बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ रहते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा सुना सकें, कुछ ऐसा कह सकें जो आपके दिल को भा जाए। और सरफराज आज भी बैठा है तेरी राह में तन्हा, किसी हमदम को दिल का गम बताया नहीं आता। बहुत खूब और बड़ा अच्छा लिखते हैं आप, और आप सभी जानते हैं कि हम बहुत छोटे कुछ मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप लिखते रहिए, आपकी कलम की जो धार है वो हमेशा ऐसे ही तेज होती रहे, बहुत शुक्रिया। और रंगी महफिल में आपका आपको प्यार भरा नमस्कार। आदाब अर्ज, आदिल कमर गुन्नौर से लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, लिखते हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड गुड गजल, और बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम। आपको भी हम बहुत बड़ा वाला थैंक्स कहना चाहते हैं मुखी फैमिली, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और अच्छा लगता है आपको, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं। वो झील, वो नदियाँ, वो हवाएं एक तरफ, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब लिखते हैं बहुत खूब, और लिखते हैं कि उफ इतना उम्दा गीत, इतनी हंसी, इतनी जमारात, क्या करें। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सोच समझ के और बहुत तलाश करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सके फारूक साहब, और आप सब पसंद करते हैं, दिल से शुक्रिया इसके लिए। और इसके अलावा कौन है हमारे साथ, दिल मोहब्बत में या खुदा तोड़ा है, किसी ने रिश्ता मेरा गमों से जोड़ा है, किसी ने और शोलों के बीच दोस्तों में खुद नहीं पहुंचा, मुझे लाकर इस मुकाम पे छोड़ा है। प्रेमचंद प्रेमी जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी, और बहुत शुक्रिया। लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि सभी के मैसेजेस शामिल कर सकें थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद आ रही है मैम, लेकिन गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। सुभाष दास बघेल हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ। चलिए अगर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा लगे कुछ, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि चंद लम्हे और हमारे साथ रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और चंदन दास वॉस क्लासिक, ये लिखते हैं जयंत पटना से, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही कहना चाहिए एक सॉफ्ट वॉइस है, और लगता है कि दिल से दिल तक पहुंच रही है उनकी आवाज़। आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए, अगर आपको प्रोग्राम में कुछ अच्छा लगे तो आप हमें बता ज़रूर सकते हैं। ज़िंदगी पर किताब लिखूँगा, उसमें सारे हिसाब लिखूँगा, प्यार को वक्त गुजारी लिखकर, चाहतों को अजाब लिखूँगा, ये भी किसी शायर का ख्याल है, अपनी ख्वाहिश का तज़करा करके उसका चेहरा गुलाब लिखूँगा, हुई बर्बाद मोहब्बत कैसे कैसे बिखरे हैं ख्वाब लिखूँगा, मैं उससे जुदाई का सबब अपनी किस्मत ख़राब लिखूँगा।

अजब कहानी है जनाब, हर एक शायर का अपना नज़रिया है मोहब्बत को लेकर। कोई कहता है कि तू मोहब्बत है, वक्त मिले तो चंद लम्हे मेरे नाम भी कर दे। और कोई ये भी लिखता है कि जब जब मैं तेरा हिसाब लिखूँगा तो चाहतों को अजाब लिखूँगा। लेकिन जनाब कुछ भी कहिए, मोहब्बत है बहुत खूबसूरत शय। जैसे मोहब्बत हो जाए, समझ लीजिए कि उसने

और अगर आपके पास ये जज्बा है, अगर आपके पास मोहब्बत है, तो समझ लीजिए कुदरत का इनाम है ये आपके लिए। संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगहों पर सुन रहा है और इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए, सुनवाने के लिए दिल से शुक्रिया। ये लिखकर भेजा है हमें फारूक अली खान साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा प्रेमचंद जी हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और हम तो भाई आप सभी का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम सुनते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी मोहब्बतें आपकी मिलती हैं तो दिल जो है बाग बाग हो जाया करता है कि वाकई अगर इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मोहब्बत नहीं मिल रही है आजकल, तो मुझे तो लगता है कि मोहब्बत ही मोहब्बत है, बस ज़रा सा तलाश करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत रूठ जाए तो उसे बाहों में ले लेना, बहुत ही पास करके तुम उसे जाने नहीं देना, वो दामन छुड़ाए तो उसे तुम कसम दे देना, दिलों के मामले में तो खताएं हो ही जाती हैं, तुम इन खताओं को बहाना मत बना लेना, मोहब्बत रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लेना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा

ने निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर आकाशवाणी रेनबो पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जीरो आर शो।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है

तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियो पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियो पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर अब लेकर आए हैं हम आपके लिए एक और कार्यक्रम जिसका शीर्षक है सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: मंगल भवन आ मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
5: ठीक है.
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
6: प्रिय उपयोगकर्ता आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी

वी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। रात्रि के 3:05 और स्टूडियो से एकदम लाइव आप जो है गाने सुन रहे हैं, मतलब मैं अभी आपको गाने सुनाऊंगा और नॉन स्टॉप गानों का मजा आप लेंगे और शो का नाम है मिडनाइट मेलोडीज। तो बस ऐसे ही गाने सुनते रहिए और ख्यालों की दुनिया में खो जाइए।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक बॉलीवुड का और रात के 3:56 हो चुके हैं। सुबह के 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन अभी जो थोड़े से गाने बचे हैं उन गानों का मजा लीजिए और ऐसे ही ख्यालों की दुनिया में खो जाइए।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के अंतर्गत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की आशा है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। काबो वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोंजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेलंगाना में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:06 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। अब शुरू होता है सारे गामा, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के गाने। तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और शुरुआत करते हैं अरमान मलिक की आवाज में फ्रॉम द मूवी। इस फिल्म का जो नाम है वो है दो लफ्जों की कहानी। इससे शुरुआत करते हैं और ऐसे ही गानों की लड़ी लगी रहेगी। आप सुनते रहिए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 4:47 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का मजा आप ले रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए फैंटम मूवी का ये अगला गाना।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 4:53 हुए हैं। सारे गामा शो सुन रहे हैं आप, जिसमें नॉनस्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे, तो अभी बचे हुए गाने सुनिए।